0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: 89.6. 89.6.
1: It's hot

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtuala burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, sir. Very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊं। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: पास है क्या ये सर?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस
3: का? सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो भी मशीन चलाने आती भी है।
3: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहा है तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी,
2: आई एम
3: सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
2: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आनंद राजानंद की आवाज में ये गाना हमें ये खूबसूरत सुबह वेलकम करता हुआ राइट हियर ऑन मिर्च मॉर्निंग्स। हाँ जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्च मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, हर रोज जो मैं आजकल घर से निकलती हूँ ना, और ये रियलाइज करती हूँ कि खतर कितना खाली खाली सा हो गया है। मतलब हर एक दिन के साथ आगे जैसे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा खाली लग रहा है। आई थिंक सो ये जो सिलसिला है ये 15th of July तक ऐसे ही कुछ चलेगा, मिड जुलाई तक है ना। तब तक के मेरे ख्याल से खतर और ज़्यादा खाली होते जाएगा, लोग यहाँ से वेकेशंस पर जाते रहेंगे और साथ ही मैं भी जाने वाली हूँ, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट वेकेशन। क्योंकि यार कतर की गर्मी का जो ये हाल है ना, कौन नहीं चाहेगा कि यार थोड़ा ही वक्त ही सही लेकिन यहाँ से एस्केप कर ले।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेल देखो, वेदर आज ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस, वेयरएज मिनिमम इज 35 डिग्री सेल्सियस। अब एक्चुअली जो अभी महसूस कर रहे हो वो 38 डिग्री सेल्सियस है, और ह्यूमिडिटी जो है वो बिल्कुल हवा में है नहीं, 28% पर है, यानी आपको ड्राइनेस और ज्यादा महसूस होगी। इसीलिए कहती हूँ भाई, सनस्क्रीन को बेस्ट फ्रेंड बनाइए, मॉइस्चराइजर लगाते रहिएगा रात को सोते वक्त, पानी पीते रहिए, उससे बेटर क्या हो सकता है आपकी स्किन आपकी तबीयत को बेहतर रखने के लिए। मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक राइटर ऑन मिर्ची। कमिंग अप नेक्स्ट, अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाज में ये गाना। गलती से, मिस्टेक से नहीं लगाया ये गाना, लगाया है जानबूझकर आपके लिए ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

और देखो बॉस, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, आपके लिए हर चीज में, हर इंफॉर्मेशन में आसानी यहाँ पर लेकर आती रहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए भाई, ट्रैवल का सीजन चल रहा है हमारे खतर में, एकदम पीक पर रहता है स्पेशली जून एंड जुलाई में, और एक और रहता है जब दिसंबर में भी लोग ट्रैवल करते हैं। और क्योंकि लोग अब ट्रैवल करने वाले हैं, एंड आई नो यार, बच्चों के साथ एक तो है ट्रैवल करना इज़ नॉट ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम जोन्स जो है इतने वियर्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पहले तो फ्लाइट्स के टाइम जो होते हैं लेट नाइट्स होती हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टॉडलर्स या उससे भी छोटे जो होते हैं, उनके लिए हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कितनी आसानी यहाँ पर कर ली है। और वो कैसे, वो ऐसे कि फ्री स्ट्रोलर सर्विस चल रही है, ठीक है। इसके लिए ना बुकिंग, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं चाहिए। यू कैन जस्ट पिक वन स्ट्रोलर फ्रॉम द कॉन्कोर्सेस ए बी सी डी और ई एंड लीव इट एनी वेयर विद इन द एयरपोर्ट। मतलब जहाँ पर भी आपको लगे कि आपके बच्चे थक गए हैं अभी और नींद में हैं, अब सोने वाले हैं। और कभी कभार क्या होता है ना कि आप वेट लिमिट की वजह से या किसी वजह की वजह से आप स्ट्रोलर्स हमेशा नहीं कैरी कर पाते हो फॉर ट्रैवल्स, है ना। और जब एयरपोर्ट ऐसी सहूलियत देता है तो बस और क्या चाहिए। यूं ही थोड़ी ना कहते हैं हमारे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: सुनील चौहान की आवाज में ये गाना, व्हाट अ पावर पैक्ड सॉन्ग यार। एंड आई एक्चुअली क्लियरली रिमेम्बर ये गाना फीचर किया गया था लारा दत्ता पे एंड शी वाज रियली लुकिंग गुड इन दिस सॉन्ग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए बॉस, अपने कतर में एक खास बात ये है ना कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सीजनल फ्रूट्स की ना कमी हमें महसूस नहीं होती है। जैसे इंडिया में होता है ना कि 3 महीना आम का सीजन होता है, फिर कभी कभार वाटरमेलन वैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन कोई कोई फ्रूट्स जो सीजनल होते हैं, स्ट्रॉबेरी जैसे देख लीजिए, वहाँ पर ठंडी के वक्त पे मार्च फरवरी जनवरी के टाइम पर स्ट्रॉबेरीज मिलती है, लेकिन हमारे कतर में ना तकरीबन हर फ्रूट ना ऑल अराउंड ईयर मिलते रहता है बिकॉज अलग अलग कंट्रीज से आता है ना। भले ही टेस्ट अलग हो, लेकिन जैसे मैंगो हमें इजिप्ट का मिलता है, कभी कीनिया का मिलता है, ऑफकोर्स इंडिया का तो मिल ही जाता है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी मैंगोज एज वेल। इफ आई एम राइट, पाकिस्तानी मैंगोज में चौसा अच्छा है। इफ एनी पाकिस्तानीज आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, प्लीज टेल मी वहां की स्पेशलिटी क्या है, बिकॉज ये तो मैं जाके चेक करूंगी। कहां पर पता है, ये 9th ऑफ जुलाई से सुकाकिफ में, जिस तरह से इंडियन मैंगो फेस्टिवल था ईस्टर्न स्क्वायर में, अब पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल आ रहा है एंड देयर इज गोना बी वैरायटी ऑफ पाकिस्तानी मैंगोस। सो एनीवन लिसनिंग टू मी राइट नाउ, मुझे देखो इंडिया से रहते हुए मुझे पता है कि हमारे लिए हीरो तो अल्फोंसो है, मतलब हापुस आम है ना। आपके लिए वो कौन सा वाला आम हीरो है? 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर। मुझे भी तो मेरी जनरल नॉलेज ठीक करनी है ना, और ऐसे डायरेक्ट लोकल सोर्स से हो तो और भी ज्यादा वेरीफाइड न्यूज लगती है मुझे, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पर देती हूँ कतर की वेरीफाइड न्यूज राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक। लौटिका की आवाज में अगला गाना इंजॉय कीजिएगा, इट्स हॉट।

0: energie.
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
2: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 7:03 की तरफ और आपका साथ राइट हियर मिर्ची आप चीन के साथ में और थोड़ी ही देर में लेकर आ रही हूँ फुटबॉल के स्कोर अपडेट्स और मिर्ची इट्स हॉट
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर

मेरे ख्याल से कल ना फुटबॉल फैंस दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब थोड़े से इमोशनल हो गए थे। वो क्या होता है ना दोस्तों कि कभी कभार एक गेम या स्पोर्ट हमें अगर पसंद है, इट्स नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट, इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज प्लेइंग इट। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। कितने ही सारे फुटबॉल फैंस का कल दिल जरूर टूटा था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली रोनाल्डो के फैंस। देखिए कल रात ऐसा कुछ हुआ जो हम शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे और थोड़ा सा हमें शॉक लगा है। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेन और पोर्चुगल की ये मैच, जहां पर स्पेन ने 91st मिनट के ड्रामेटिक गोल से 1-0 से हरा दिया, विच वॉज अनबिलीवेबल। यानी एक गोल भी नहीं कर पाया पोर्चुगल। लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट ये था दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म होता है। अब चाहे आप मेसी फ़ैन हो या रोनाल्डो फ़ैन, एक बात तो सब मानेंगे कि फुटबॉल का एक गोल्डन चैप्टर का पर्दा जो है ये गिर गया है। एंड वी रियली फेल्ट दैट जब आखिरी में रोनाल्डो वॉज वॉकिंग, ग्राउंड छोड़कर वो जा रहे थे, वो एक इमोशन, वो एक मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। और मेरे ख्याल से इतनी रोमांचक मैच जो कल हुई, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट एक्साइटिंग मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप 2026। अब अगर बात करते हैं दूसरे राउंड ऑफ 16 क्लैश में, बेल्जियम ने होस्ट यूएसए को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल्स का टिकट हासिल किया। अब क्वार्टर फाइनल में होगा एक ब्लॉकबस्टर, मजा ही आने वाला है, जहां स्पेन और बेल्जियम भिड़ने वाले, क्या बात है। अच्छा, अब आज रात के भी दो जबरदस्त क्लैशेस हैं, एक तो अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, जहां सबकी नजरें मेसी पर होने वाली है फॉर श्योर। एंड कतर में रहने वाले इतने सारे अरब जो है, दे आर फॉर श्योर गोइंग टू सपोर्ट इजिप्ट। बड़ा मजा आने वाला है आज भी कतर में। और जहां उसकी बात की मैच की बात करें तो स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया है, जहां एक और क्वार्टर फाइनल स्पॉट डिसाइड होगा। अब देखते हैं, फुटबॉल में रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, ट्रॉफीज किसी और के नाम हो जाती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स अपनी लेगेसी स्कोर लाइन से नहीं, इमोशन से लिख जाते हैं। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो माय फ्रेंड्स उन्हीं नामों में से एक है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा?
3: रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर इसमें।
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
12: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा, मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो दोस्त, अगर मैं कहूँ आपसे कि अब से आपका ना चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास बन सकता है ट्रैवल में, तो आप मानोगे? मानना ही पड़ेगा बॉस, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए, अगर आप कतर एयरवेज से एलिजिबल फ्लाइट पे दोहा से कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं और आप अडल्ट है यानी 18 प्लस है, तो HIA ने यानी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया फास्ट पास फीचर आपकी फेस रिकग्निशन को ही बोर्डिंग क्रेडेंशियल बना देगा। एक बार बायोमेट्रिक प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और फिर सेल्फ बैकड्रॉप, सिक्योरिटी और बोर्डिंग किट पर बार बार डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, फास्ट पास ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, और पासपोर्ट फिर भी साथ रखना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इमिग्रेशन ई गेट्स या अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो फिजिकल पासपोर्ट ही आपके काम आने वाला है ना। और देखिए, अगर प्राइवेसी कॉन्शियस लोगों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप एयरपोर्ट कियोस्क से रजिस्टर करते हैं तो आपका बायोमेट्रिक डेटा सिर्फ उस ट्रिप के लिए यूज होता है और फ्लाइट डिपार्चर के 24 घंटे बाद ये डिलीट कर दिया जाता है। अगर कतर एयरवेज ऐप से रजिस्टर करते हैं तो डेटा आपका डिवाइस पर रहता है और आप कभी भी ऐप सेटिंग से ये डिलीट कर सकते हैं। सो बॉटम लाइन ये है, इट्स नॉट जस्ट अ फास्टर एयरपोर्ट एक्सपीरियंस, इट्स अनदर ग्लिम्स इनटू हाउ ट्रैवल इज बिकमिंग फ्रिक्शनलेस, कॉन्टैक्ट लाइट एंड AI पावर्ड, है ना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है।
6: इरशाद इरशाद

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जॉन एब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री?
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन, एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन एब्राहम। अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood bold dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bold dal.
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: वेल अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना राइटर ऑन मिर्ची, और इतनी सी तो बात है। या फिर कहिए इतना सा तो सवाल है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है। और देखिए ये वक्त वो है जहां पर हम और आप मिलकर खेलते हैं लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। और आज का जो सीन है ना, प्रोबेबली नॉट अ फेमस डायलॉग, बस एक सीन है, ठीक है, लेकिन मूवी बहुत दमदार थी बॉस, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है। कौन सी है, चलिए यहाँ पर पहले डायलॉग सुनते हैं। रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय माय फ्रेंड्स, और ये सुनो डायलॉग।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट
2: कौन है तू? दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन हूँ।
0: देखते हैं लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। और आज का जो सीन है ना, प्रोबेबली नॉट अ फेमस डायलॉग, बस एक सीन है, ठीक है, लेकिन मूवी बहुत दमदार थी बॉस, मतलब मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है। कौन सी है, चलिए यहाँ पर पहले डायलॉग सुनते हैं। रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय माय फ्रेंड्स, और ये सुनो डायलॉग।
1: लाइट्स कैमरा

0: कल को मैं ऑफ हो गया, लोग फिर भी ये वीडियो देखेंगे, कुछ महसूस करेंगे, इसका कदर है, मेरा कदर है।
1: यस, और मेरे सवाल का भी बहुत कदर होता है, ये गेम का भी बहुत कदर होता है यहाँ पर। बताओ, चलो फटाफट से बताओ दोस्त, यार बंधु, 5000196 नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है, और आपने बताना है कि ये कौन सी मूवी का सीन है, ठीक है ना। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे टाइपिंग भी दिख रहे हैं और मैसेजेस आ भी रहे हैं, सही भी है। वेल, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी ये, ठीक है, और सही आंसर्स आने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आई वेटिंग फॉर आंसर्स, 5000196। मीनवाइल अगला गाना जो सुना रही हो ना, क्वीन मूवी से है, यस, कंगना रनौत की ये मूवी, एंड दिस सॉन्ग इज क्वाइट अंडररेटेड, बट व्हाट अ सॉन्ग यार, मोहन कन्नन की आवाज में, एक ऐसा गाना जब आपको ऐसा लगे ना कि जिंदगी में सब ठीक नहीं है यार, यार मोटिवेशन जरूर देता है ये गाना।
2: साथ में जो हमारे खास थे कर गए अपने,
1: एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: Our business is our business, none of your business.
2: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
3: Qatar का number one radio station.
4: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: 82. Mirchi Mornings, brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है राइट ना. आपने सुना मिका सिंह और तरुण मलिक की आवाज में ये गाना एंड देखो भाई ऐसा हाल है कि यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज इस तरह से कर देती हूँ. लेकिन कुछ लोग तो होते हैं कि भाई बहुत ही स्मार्ट होते हैं, एकदम मतलब बॉलीवुड ने घोट कर पी चुके रहते हैं, जो हमें एकदम सही जवाब देते हैं. लेकिन गलत जवाब का भी एक अलग ही मजा है. वेल, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट जो मैं खेलती हूँ ना, तो आज मैंने सीन जो है बड़ा ही बेसिक सा चुना है, लेकिन मूवी एकदम एक नंबर है बॉस. वो क्या बोलते हैं ना, अब इसको ना रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ना एकदम भावुक हो जाती हूँ कि और मूवी का नाम मैं खुद ही ना बोल दूँ. उससे पहले आप सुन लो यहाँ पे.
2: कौन है तू? दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन हूँ? 4 लाख से भी ज्यादा लोग ये वीडियो देखे.
3: तो क्या
2: वो इसका कुछ मतलब है? लोगों को फर्क पड़ता है इससे. कल को मैं ऑफ हो गया, लोग फिर भी ये वीडियो देखेंगे, कुछ महसूस करेंगे. इसका कदर है, मेरा कदर है.
1: All right. क्या मूवी थी बंटाई, क्या बोलूं आपको मैं, एकदम मेरे अंदर का मुंबई वाला जाग रहा है. वेल, बहुत सारे लोगों के आंसर्स यहाँ पर आए हैं. महबूब शरीफ, देन आई हैव योर अब्दुल रजाक कमर, आई ऑल्सो हैव योर मोहम्मद यूसुफ खान हु इज मैसेजिंग मी राइट नाउ. और फिर ये कौन है भाई, आपने नाम लिखा करो, मुझे नहीं मालूम आपके नाम कैसे पता चलेंगे. ताहिर अली, हुज़ैब, फिरोज, नागेश, इन सभी का कहना है कि आफरीन ये जो मूवी है ना, ये है गली बॉय. यस, हमारे बर्थडे बॉय की मूवी, जिनका बर्थडे कल था. रणवीर सिंह, हाँ रणवीर सिंह यार, जिनकी बातें अगर मैं करना चाहूँ ना तो इट्स गोन बी टू मच, बिकॉज यार इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है ना. सो वेल, रणवीर सिंह की ये मूवी की खास बात ये थी कि गली बॉय में इन्होंने बहुत ही उमदा एक्टिंग भी की थी. वो मुंबई का एकदम छोकरा टपोरी, वो बंटाई दोस्त, क्या बोलता है पब्लिक, वो सब वो उन्होंने बहुत अच्छा किया था. लेकिन अलॉन्ग साइड ही हैज संग इन द सॉन्ग as well, और जो रैपिंग वगैरह की है ना, एकदम एक नंबर बॉस. वेल, विद दिस अगला गाना जो सुना रही हूँ ना, दिस मूवी का, फिलहाल के लिए उनका नाम ही लेना चाहूंगी यहाँ पर जो मैसेजेस कर रहे हैं. शारिक का यहाँ पर मैसेज आया और अस्मा का मैसेज आया है, तो चलो ठीक है, मैंने आपका नाम यहाँ पर कह दिया है. अगले गाने की तरफ अब मैं बढ़ती हूँ. रघु दीक्षित और कर्ष काले की आवाज में ये गाना है. नॉट सो पॉपुलर सिंगर्स, लेकिन आई थिंक सो दिस सॉन्ग ब्रिंग्स इन लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. बिकॉज आई रिमेंबर जब ये मूवी खत्म हुई थी ना, तब ये गाना बजा था.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: वेलकम टू का ये गाना, या कह सकते हैं वेलकम टू द जंगल का ये गाना, आनंद राज आनंद की आवाज में ही राइचर और मिर्ची। और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:03 की तरफ, और साथ है सिंपली आफ्टरनून का आपके साथ।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

यासिर देसाई की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, और इसे आप एक फ्रेंडली रिमाइंडर जैसे ही समझ लीजिए। और आदर्श राय से अ किड फ्रेंडली रिमाइंडर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग। सर देखिए, बस हमारे कतर में समर वेकेशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने घर पर ही रहना है और फिर घर पर रहकर पूरा टाइम क्या करेंगे, स्क्रीन से खेलेंगे, स्क्रीन देखेंगे, उसके अलावा खेलने के लिए भी उनके पास ठीक है ऑप्शंस रहते हैं, बट इससे अच्छा तो ये है ना कि बच्चे जितना हो सके कोई फिजिकल एक्टिविटी, दिमाग उनका ज़्यादा तेज़ चलते रहे, कंटिन्यूसली बिजी रहे, ये सारी चीज़ों में है। तो बस टॉय फेस्टिवल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ख्याल से यार बच्चों को ये पूरे महीने में ना एक से दो बार लेकर ही जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो यार हम बच्चों को प्ले जोन में लेकर जाते हैं कोई मॉल्स के, तो यार इट्स लाइक ईजीली यू स्पेंड 150-200 रियल्स, बट एट दिस प्लेस कतर टॉय फेस्टिवल जहाँ पर वीकडेज में जो टिकट है ना इट्स ओनली 50 कतरी रियल, और वीकेंड्स की बात करें तो 70 रियल्स है। लेकिन फैमिली पैकेजेस तो है ही ना, तो वो भी तो एक चांस है। वेल, हो क्या रहा है कतर टॉय फेस्टिवल में इस बार वो तो मैं बता दूं, DECC में वैसे ये होता है और इतने सारे ब्रांड्स के टॉयज होते हैं। वैसे तो सच बताऊं ना, मैं कहीं ना कहीं एक्साइट हो जाती हूँ ये सारे ब्रांड की टॉयज देखते हुए। यार हमारे समय में क्यों नहीं था ऐसा, क्योंकि पिछली बार मुझे अच्छे से याद है कि वहां पर कहीं एक प्रिंसेस बन रही है, पूरा ड्रेसअप हो रही है बाकायदा, उसके हेयर स्टाइल्स हो रहे हैं, एंड व्हाट नॉट इज हैपनिंग यार वहां पर। एक ऐसी खिलौनों की दुनिया जो हमने शायद बचपन में सपने में भी नहीं सोचा था, जो आजकल के बच्चे हकीकत में जी रहे हैं। सो आई थिंक सो दिस इज अ ब्यूटिफुल टॉय फेस्टिवल विच इज गोइंग ऑन इन DECC। बच्चों को जरूर लेकर जाओ और ऐसे दूर से खड़े रह करना, कहीं ना कहीं अपने आप को भी इमेजिन कीजिएगा कि यार मैं ऐसे खेलते हुए कितना मजा आता है ना, कितना ही मतलब बस खुश हो जाओ यार अपने बच्चों को इतने खुश वहां पर रहते हुए। मैं हूँ आफ्रीन आपके साथ माइक से दिल तक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Pisca bana, pusca bana, saca bana. Gambana. Burga, burga. Na vid bala burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
3: आपके पास
1: है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपको
1: क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है।
3: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ, आइए free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

सुनेगी जहां की आवाज में ये गाना राइटर ऑन मिर्चीज। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को प्लेइंग नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू बनी देयर और शाल मलिक होलगड़े की आवाज में, और उसके तुरंत बाद लेकर आती हूँ एक्सचेंज रेट्स ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

Well, that was Benny Deol and Shalmali right here on Mirchi. ये गाना आपको सुनाया किसने लेकिन? देखो जी, अगर आफरीन अच्छे गाने भी सुनाती है ना, तो साथ साथ अच्छी बातें भी लेकर आती है जो आपकी बहुत फायदे की होती है, जैसे एक्सचेंज रेट्स। यस, एक्सचेंज रेट्स ना आजकल जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है दोस्त। पता है मुझे, आप जा रहे हो अपने कंट्रीज, होम टाउन जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो भाई एक्सचेंज करके जाओगे ना, वहां पर इतना खर्च जो होने वाला है आपका। तो सुन लीजिए आज के आईपे के एक्सचेंज रेट क्या कहते हैं। एक कतर रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.11, वही जना पाकिस्तानी रुपीज 76.55। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.93 पर है। श्रीलंकन रुपीज इज एट 91.84 और नेपाली रुपीज इज एट 41.76। ये थी आज की एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, और बस कुछ ही देर में मिलके फिर से खेलेंगे भाई, थोड़ा से दिमाग के घोड़े को दौड़ाएंगे। राइट हियर ऑन मिर्ची, वहां एक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: गुड़ किन्ने खा लिया
1: स्वीटी,
0: गुड़ वाली चाह किन्ने पीती
1: स्वीटी,
0: बुआ जी दा नाला किन्ने खिचया
1: हाँ
0: खिच के मर किन्ने सीटी।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद। इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: There is some magic about this song, nahi? अभिजीत की आवाज़ में ये गाना खूबसूरत तो सुनाई देता है, लेकिन मेरे ख्याल में ना ये गाना क्यों खास है पता है? म्यूज़िक की वजह से भी नहीं, आवाज़ की वजह से भी नहीं, लेकिन इसके लिरिक्स की वजह से जो महबूब ने लिखे थे. What a beautiful song and one of my favorite songs. Right here on मिर्ची आपने ये गाना सुना. Very good morning, Qatar. जाग गए कि नहीं आप? You need a wake up call यार, इसलिए तो आप tune in करते हो 89.6 FM पर और यहाँ पर खेलने के लिए रेडी हो जाते हो, है ना? Well, time हो चला है कि आप पहचान कौन ये गेम मेरे साथ खेले, जहाँ पर एक आवाज सुना रही हूँ मैं आपको. बड़े मजे की आवाज है ये. अच्छा, इनके बारे में क्या कहने यार, ये आवाज ही काफी है और इनकी तो इतनी मिमिक्री होती है ना इनकी आवाज की, तो आप यूं पहचान लोगे. ठीक है, वॉल्यूम करो हाई रेडियो सेट्स की और ध्यान से आवाज सुनो सेलिब्रिटी की और बताओ भाई ये कौन है शख्सियत आखिरकार.
1: मैं शाहरुख ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया क्योंकि वो हम इतना गरीब शूट था, वो बहुत ही गरीब बजट था उसका. शाहरुख वाज पेड 25,000. आई वाज द हाईएस्ट पेड इन दैट मूवी, आई वांट टू टेल यू, बिकॉज़ आई वाज पेड 5,000 रुपीस अ सॉन्ग.
0: राइट, इनफ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो रही है. ये कौन सी मूवी की बात हो रही है इसके बारे में तो हम एक्चुअली में बात करेंगे, लेकिन ये कौन है जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है ये तो आप ही बताओगे मुझे. 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर माई फ्रेंड्स, लेट्स कनेक्ट हियर और फटाफट से आपके आंसर्स दो, वॉइस मैसेज भेजो, टेक्स्ट भेजो, जो मर्जी चाहिए आपको करिए, लेकिन आंसर जरूर करिएगा. पपोन की आवाज में ये दूसरा गाना जो बजा रही हूँ ना मैं, फिर से मेरे दिल के काफी करीब है यार. इट रियली काम्स यू. कुछ गानों में ऐसा जादू होता है, कुछ आवाजों में ऐसा जादू होता है, कुछ म्यूजिक में होता है, एंड दिस सॉन्ग हैज इट ऑल. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना राइटर ऑन मिर्ची और आपके साथ जुड़ गई है। हाँ जी, सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। एक आवाज आपको सुनाई है, गेम का नाम है पहचान कौन, और आपने पहचाना ये आवाज कौन सी है। सी इट गोस,
2: मैं शाहरुख ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, क्योंकि वो हम इतना गरीब शूट था, वो बहुत ही गरीब बजट था उसका। शाहरुख वाज पेड 25,000 फॉर, आई वाज द हाईएस्ट पेड इन दैट मूवी, आई वांट टू टेल यू, बिकॉज आई वाज पेड 5,000 रुपीज अ सॉन्ग एंड देयर वाज सिक्स सॉन्ग, सो आई वाज पेड 30,000।
1: ऑलराइट, कौन है ये जो शाहरुख खान से ज्यादा कमा रही है, ये मैं नहीं बता सकती, ये तो आप ही बता सकते हो ना। तो हियर इट गोज, चलिए सुनते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, कुल बढ़िया, आप कैसे? ऑलराइट,
3: हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग,
1: वेरी गुड मॉर्निंग।
3: अभी आपने एक ऑडियो क्लिप सुना के बोलने के गेस करने के लिए बोली थी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
3: एंड अनडाउटेडली इट्स नन अदर देन फराह खान।
1: दैट इज राइट,
3: थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हेलो,
4: गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग।
4: ये है फराह खान।
1: ओके,
4: और ये मूवी की जो बात हो रही है वो है हैप्पी न्यू ईयर।
1: अच्छा जी,
4: राज मोहम्मद शेख।
1: अरे भाई, आप कैसे बात कर सकते हो, ये हैप्पी न्यू ईयर की बात थोड़ी हो रही है। वेल, इतने साल पुरानी मूवी जहाँ पर शाहरुख खान को सिर्फ 25,000 रुपये मिल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पे, तो शाहरुख खान वाज ऑलरेडी द किंग खान। सो शाहरुख खान के बारे में फराह खान इज द राइट आंसर, पहली बात तो ये बता दो जिन्होंने सही जवाब दिया है। बहुत सारे लोग हैं, जाहिद खान, मोहम्मद यूसुफ खान, एंड आई हैव ताहिर मैसेजिंग हियर, आई हैव मैनी पीपल जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखे हैं, महबूब शरीफ, अब्दुल रजाक, देन सैयद नोमान, विवेक, एंड आई ऑल्सो हैव आसमा, हुज़ैब का भी है नाम यहाँ पर। सो वेल, किसी का नाम मिस कर दी हूँ तो आई एम सॉरी। और बात करते हैं दिस मूवी जहाँ पर फराह खान बात करती है अबाउट दिस मूवी कभी हाँ कभी ना के बारे में, जो शाहरुख खान की सबसे फेवरेट मूवी रही है। सो वेल, यहाँ पर शाहरुख खान को सिर्फ 25,000 रुपये मिले थे, एज शी सेड दैट फराह खान को 5,000 फॉर ईच सॉन्ग, एंड फराह खान में ये टैलेंट पहले से ही था। अगर आप वो मूवी देखें जो जीता है वही सिकंदर का गाना, पहला नशा, दैट्स द सॉन्ग शी कोरियोग्राफ्ड, एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग एवर टू बी डन इन स्लो मोशन स्टाइल। मतलब बॉलीवुड में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कोई गाना। याद आ रहा है अब आमिर खान ऐसे जंप कर रहे हैं पहाड़ों में, ऐसे घूम रहे हैं, पूजा वेदी का वो रेड ड्रेस, याद आएगा? आएगा जब आप ये गाना पूरा सुनोगे। यहाँ पर उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये जो गाना है, वाओ। हमारा पहले क्रश के टाइम पर ये गाना अपने आप ऐसे बैकग्राउंड में बजा था कि नहीं आपके? हुआ था तो एंजॉय और यादें ताजी करो। चाहे

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ।
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

मेरे ख्याल से कल ना फुटबॉल फैंस दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब थोड़े से इमोशनल हो गए थे. वो क्या होता है ना दोस्तों कि कभी कभार एक गेम या स्पोर्ट हमें अगर पसंद है, इट्स नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज प्लेइंग इट. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. कितने ही सारे फुटबॉल फैंस का कल दिल ज़रूर टूटा था. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली रोनाल्डो के फैंस. देखिए कल रात ऐसा कुछ हुआ जो हम शायद उम्मीद नहीं कर रहे थे और थोड़ा सा हमें शौक लगा है. वेल आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेन और पोर्चुगल की ये मैच, जहाँ पर स्पेन ने 91st मिनट के ड्रामेटिक गोल से 1-0 से हरा दिया, विच वॉज अनबिलीवेबल. यानी एक गोल भी नहीं कर पाया पोर्चुगल. लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट ये था दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म होता है. अब चाहे आप मेसी फ़ैन हो या रोनाल्डो फ़ैन, एक बात तो सब मानेंगे कि फुटबॉल का एक गोल्डन चैप्टर का पर्दा जो है ये गिर गया है. एंड वी रियली फेल्ट दैट जब आखिरी में रोनाल्डो वॉज वॉकिंग, ग्राउंड छोड़कर वो जा रहे थे, वो एक इमोशन, वो एक मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी. और मेरे ख्याल से इतनी रोमांचक मैच जो कल हुई, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट एक्साइटिंग मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप 2026. अब अगर बात करते हैं दूसरे राउंड ऑफ 16 क्लैश में, बेल्जियम ने होस्ट यूएसए को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल्स का टिकट हासिल किया. अब क्वार्टर फाइनल में होगा एक ब्लॉकबस्टर, मजा ही आने वाला है, जहां स्पेन और बेल्जियम भिड़ने वाले, क्या बात है. अच्छा, अब आज रात के भी दो जबरदस्त क्लैशेस हैं. एक तो अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, जहां सबकी नजरें मेसी पर होने वाली है फॉर श्योर. एंड कतर में रहने वाले इतने सारे अरब जो है, दे आर फॉर श्योर गोइंग टू सपोर्ट इजिप्ट. बड़ा मजा आने वाला है आज भी कतर में. और जहां उसकी बात की मैच की बात करें तो स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया है, जहां एक और क्वार्टर फाइनल स्पॉट डिसाइड होगा. अब देखते हैं, फुटबॉल में रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, ट्रॉफीज किसी और के नाम हो जाती है, लेकिन कुछ प्लेयर्स अपनी लेगेसी स्कोर लाइन से नहीं, इमोशन से लिख जाते हैं. एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो माय फ्रेंड्स उन्हीं नामों में से एक है. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. ला ला.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na fiind vala burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी
2: तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी, किया था।
2: हाँ, ये तेजेंद्र जी, आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे, इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी,
2: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब। तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं, कोई नहीं है।
2: हम ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
1: हेलो।
2: हाँ, बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा भाई?
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है? क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने। यार आप मेरी तेजेंद्र जी,
1: नहीं
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार, आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
1: नाम बता पहले।
2: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया। भाई तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: पांडे की आवाज में ये गाना आपने राइट ईयर सुना और राबता करने का वक्त तो आपका हो गया है, लेकिन उससे पहले एक्चुअल वक्त क्या है वो तो देख ले। 9:22 हो रहे हैं मिर्ची घड़ी में।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और फटाफट से राबता कर लो ऑल द टैलेंटेड पीपल लिसनिंग टू मी। आप किसी को जानते हो जिसमें भरपूर सा टैलेंट है? अब देखिए, टैलेंट का मतलब सिर्फ गाने नाचने तक सीमित तो नहीं रहता है। हाँ, रहता है, और वो भी एक टैलेंट है। ऑफ कोर्स अपने आप में टैलेंट है। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हो, कोई गाना है, कोई डांस है, एनीथिंग। लेकिन टैलेंट अपने आप में अलग अलग तरीकों से भी होता है। किसी को बात करने का टैलेंट है, तो किसी का शायराना अंदाज है, तो किसी को दो हाथ से लिखने का टैलेंट है, तो किसी को जगलिंग करना है, किसी को मैजिक करने आता है। भाई टैलेंट कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी को बीट बॉक्स आता है, वो कुछ आता है ना ऐसा फेस, ये माउथ से ऐसे ऐसे आवाजें निकालते हैं। आई डोंट नो, ट्राइंग बट आई फेल। जो भी है, इतने सारे टैलेंट्स हैं दुनिया में जो शायद मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि घर में ये बंदा ये कर रहा है, इसे कीमत तो यहाँ है नहीं, लेकिन भाई टैलेंट तो ज़रूर है। तो पहुँच जाइए, मिर्ची ये दे रहा है ना आपको मंच। अब कैसे पहुँचना है यहाँ तक, इसके लिए तो आपको हमें रब्ता करना पड़ेगा ना भाई। 5000196 देखिए व्हाट्सएप नंबर है हमारा। यहाँ पर अपना मैसेज भेजिए, अपना वीडियो भेजिए 30 से 40 सेकेंड का, वो टैलेंट दर्शाते हुए कि भाई ये देखो ये हमें टैलेंट है और हमें लगता है कि कतर का गॉड टैलेंट, कतर्स गॉड टैलेंट का ये खिताब जो है ये हमें मिलना चाहिए। सो वेल 5000196 इफ यू नो समवन हु हैज इमेंस टैलेंट, देन टेल देम दिस मैसेज कि जाओ भाई मिर्ची वाले अब ऐसा कुछ कर रहे हैं। सो फिलहाल के लिए तो मैं हूँ आफरीन आपके साथ। खलबली मची हुई है पूरे कतर में कि यार टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है, हमारे अंदर का टैलेंट वो सिलेक्ट करो। शिवा पाठक और शैल हादा की आवाज में फॉर ऑल द टैलेंटेड पीपल आउट देयर, खलबली मचाओ और भेजो अपने वीडियोस ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
1: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
2: दोस्ती कैसे सुले मैडम? No sorry, no thank you.
3: भाई साहब, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
4: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
5: खूब मिलेगा.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
7: 89.6 FM, मिर्ची वन. It's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, Mirchi पर आपने सुना ये गाना सचिन टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में moving up to the next track that is अभिजीत सावंत की आवाज में इंडियन आइडल 1 का विनर याद है ना. इनफैक्ट हमको सिर्फ वही याद है, बाकी कोई याद नहीं है. मुझे तो ऑनेस्टली 2, 3, 4 कौन था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. सो वेल लेट्स गो अहेड विद दिस ट्रैक. लफ्जों में कह ना सकूं और लफ्जों में बहुत कुछ कहने वाली हूँ मैं इस गाने के उस पार. सो यू गॉट स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज सिंपली Afreen on Mirchi. It's hot.

0: अच्छा मुझे बताइए कि हर गलत फहमी का जवाब देना जरूरी है क्या? क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग जो है आपको समझना चाहते ही नहीं, वो बस अपनी बनाई हुई तस्वीर पर यकीन रखना चाहते हैं। और बस इसी ख्याल पर आज आफरीन की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, खत्म करते हैं अब सफाइयों का सिलसिला, खत्म करते हैं अब सफाइयों का सिलसिला, तुम भी थक गए होंगे हमें बुरा समझते समझते, जो तुमने समझा मैं वो थी ही नहीं, जो तुमने समझा मैं वो थी ही नहीं, और जो मैं हूँ वो तुमने कभी। आज आफरीन की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: शायरी तो अर्ज किया है, खत्म करते हैं अब सफाइयों का सिलसिला, खत्म करते हैं अब सफाइयों का सिलसिला, तुम भी थक गए होंगे हमें बुरा समझते समझते, जो तुमने समझा मैं वो थी ही नहीं,

रिश्ता इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान बोलता रहता है और दूसरा समझने की कोशिश ही नहीं करता। फिर एक वक्त आता है जब सफाई देना छोड़ देते हैं, क्योंकि जो दिल से समझता है उसे ना, सच कहूँ, सफाई की कभी जरूरत ही नहीं होती है, और जो समझना ही चाहते उसके लिए कोई भी सफाई काफी नहीं होती। माइक से दिल तक आफरीन के साथ हो आप, मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मेलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हेलो शार्प्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: थोड़ी का भी चलने का अब वक्त आ ही गया है। हाँ जी, सिंपली आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखते ही देखते ये जो हफ्तों की रफ्तार दिख रही है ना मुझे, आई जस्ट कांट बिलीव यार। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि मैं आज मंडे है, ऑफिस है, ठीक है, मंडे ब्लूज होते हैं, लेकिन अभी जस्ट नाउ बिफोर आई कुड स्पीक मैंने चेक किया कि भाई देख लो भाई आज कौन सा दिन है, देखा तो भाई ट्यूजडे है। एंड आई एम Not liking. Sometimes I'm not liking the speed of these days. के भाई क्या चल रहा है, ये साल इतनी जल्दी खत्म होने कैसे वाला है? Because यार one week down, we are already into July. One week हो चुका है और ऐसे ही हमारे बच्चों की भी छुट्टियां ना फर से उड़ने वाली है। Well, talking about छुट्टियां, कहीं जा रहे हो कि नहीं बताओ भाई मुझे। 5000196 is my number. इंडिया शिंडिया जा रहे हो तो भाई मिठाई जरूर लेकर आइएगा, और अगर यहाँ वहां कहीं घूमने जा रहे हो तो भी मुझे बताइएगा, थोड़ा मुझे भी आइडिया आ जाएगा कहीं जाना है क्या करना है। Meanwhile, मेरा तो यहां से फिलहाल जाने का वक्त आ गया है और बड़ी भूख लगी है, सो आई गो एंड हैव माई ब्रेकफास्ट नाउ। आपने आई होप अच्छे खा पी कर अपने दिन की शुरुआत की रहेगी अच्छे गानों के साथ, आफरीन की बातों के साथ में, और ये आपकी सुबह वाली आदत कल फिर से आपको मिलने वाली है 6 बजे से लेकर 10 बजे। और अब फिलहाल के लिए बिजली गिराने के लिए हमारी अंशु मैडम बस आती ही रहेगी आपके साथ इन सम टाइम। टाटा बाय बाय, सायोनारा। माइक से दिल तक आफरीन लेती है अलविदा, सुनते रहेगा मिर्ची इट्स हॉट।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
2: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
1: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: वेल आमिर खान और अलका याग्निक की खूबसूरत सी आवाज़ एंड भाई साहब, ये एक ऐसा गाना है जो 90s का हर एक शख्स खूब अच्छी तरह से जानता था कि उस वक्त उस दौर में भी कोई तो ट्रेंड है जिसे कैसे सेट किया जाए, उसके बारे में बात होगी अब से कुछ देर में। अभी फिलहाल ये बता दूं, वक्त हो चला है कमाल, मिट्टी घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:03।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यार मतलब ये ना किया तो लाइफ में चैलेंज पूरा किया तो कैसे किया।
2: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। वैसे आफरीन, तुम्हें आज मैं गुलाम का ये चैलेंज जो है वो जरूर देने वाली हूँ। तुम्हारे आगे मैं वो बाती लेके आऊंगी।
3: पगली भाई, और लेकिन अगर तब रील्स वगैरह होते हैं ना तो कितने लोग ये करते हैं, कितना वायरल हो जाता है ये।
0: इनफैक्ट उस समय अगर तुम्हें याद हो तो लिटरली एक ट्रेंड था कि कौन सा कर सकता है, कितने लोगों ने वो गले पे रुमाल बांध के किया। देखा
3: पैच स्टिक वाला ट्राई किया है मैंने,
0: क्या हुआ है ना,
3: और फिर जल भी गई हूँ, मतलब थोड़ा कुछ डैमेज भी हुआ है। लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ये तो एक था स्टंट, छोटा मोटा था, बट एक बड़ा स्टंट था जो आमिर खान ने किया था। दैट वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन, लोकल ट्रेन सामने से आ रही थी, इफ यू रिमेम्बर, वो अपोजिट साइड से ही वॉज रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन। बहुत खतरनाक हो ट्रेन,
0: वो ये था स्टंट था, कोई सब्स्टिट्यूट या किसी चीज को नहीं लिया गया था, जितना मुझे पता है ही हिमसेल्फ वांटेड टू डू दैट।
3: यस, एंड यू नो व्हाट, वो जो ट्रेन है, वो जो स्टेशन है मुंबई में, सानपाड़ा स्टेशन है, वहीं पर वो ट्रेन है, और मेरा घर बिल्कुल उधर ही था, तो वही स्टेशन पर था। सो दिस इज अ ट्रिविया ऑफ आमिर खान आल्सो एंड ट्रिविया ऑफ आफरीन आल्सो।
0: अब हम आफरीन के घर जब भी जाएंगे मुझे ये गुलाम पॉइंट है ये।
3: से दैट
0: बढ़िया। और वैसे तुम्हें एक और बात पता है कि इस फिल्म के लिए आमिर खान वाज वेरी स्पेसिफिक, जब ये गाना लिखा गया था दैट आई विल बी द ओनली वन हु वुड बी सिंगिंग दैट सॉन्ग। इनफैक्ट रानी से भी कहा गया था कि अगर तुम अपनी ओरिजिनल वॉइस दे सको, एंड शी वाज वेरी अवर्टेड टुवर्ड्स इट, कि चाहे मैं दुनिया में कुछ भी कर लूं मैं बाथरूम में भी गाना नहीं गाती, मैं थिएटर के लिए क्या गाना।
3: बेचारी बंदी की तो पूरी मूवी में आवाज ही बंद कर दी गई थी, इट वाज जस्ट डब्ड,
0: बैठा गला रहता था।
3: नहीं नहीं, शी वाज डब्ड, किसी और की आवाज ही थी पूरी मूवी में,
0: भाई गला उनका फॉरएवर बैठा हुआ था। लेकिन अब बैठने की बारी नहीं, आपने
3: मेरी तो जाने की बारी है,
0: तुम्हारी जाने की बारी, लेकिन हम सबकी उठने की बारी है। कुछ तो खास, कुछ तो स्पेशल है जो मिर्ची लेकर आ रहा है।
3: ये अंशु आपको विस्तार में कुछ ही देर में बताएगी,
0: आपसे मैं कुछ देर में बताऊंगी। एक ऐसा मौका जहाँ पे आपका टैलेंट, आपका हुनर, अगर आपको लगता है घर वालों ने नहीं पहचाना, तो हम देंगे ना प्लेटफॉर्म, दुनिया पहचानेगी उसे। कब कहाँ कैसे होंगी बातें आपसे कुछ देर में। लकीली की आवाज और मेरा दिल तो बस आपको ढूंढता है, आपका दिल क्या ढूंढता है ये मुझे जरूर बताना। वेटिंग फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस 5000189। Let's get connected there, Instagram Mirchi1 Kataria Mirchi Anshu. Enjoy. Bandi ka naam Anshu.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vidva la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए
3: सर। हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या
2: कोई बोल रहा
3: है? कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
11: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1, Mirchi 1. It's hot.

0: गुड नजर की खूबसूरत सी आवाज और बड़ा लवली ट्रैक इट इज यार, ये एक इंडिपेंडेंट पंजाबी गाना। लेकिन बात इतनी है ना, ये गाने की अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो सूदिंग तो ये गाना है, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब ने इस गाने को जितना पॉपुलर बनाया ना भाई, किसी और ने ना बनाया।
1: मिर्ची अंशु
0: इस गाने को तो हम सब ने मिलकर पॉपुलर बना दिया, लेकिन अब आपको पॉपुलर बनाने की तैयारी जो है वो मिर्ची का प्लेटफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। देखिए यार, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, किस वजह से है, ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जिंदगी में ना हुनर टैलेंट जो है वो कईयों के पास होता है, कईयों के अंदर होता है, लेकिन बात इतनी है कि कई लोगों को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि उनके अंदर जो टैलेंट है उसे वो शोकेस कर सकें, उसे वो दुनिया जमाने के आगे ला सकें। तो बस यही हमारी एक मुहिम है, यही हमारी एक कोशिश है कि अगर आपके अंदर ऐसा कोई इंट्रिंसिक हुनर टैलेंट है तो यार वो आप तक छुपा क्यों ना रहे, भैया वो जो है आए और पूरे जमाने के सामने आए। वेल, मिर्ची मॉमी अवार्ड्स के ग्रैंड सक्सेस के बाद इस वक्त मिर्ची अपने अगले इवेंट के साथ है पूरी तरह से तैयार, एंड दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी कतर्स गॉट टैलेंट। अब देखिए है क्या, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, दिस इज एन ओपन कॉम्पिटिशन जिसमें कोई ना उम्र की सीमा है, ना ही कोई बंधन, ना ही ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि परफॉर्मेंस जो है वो सिंगल होना चाहिए, डुएट होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी ओवरऑल वन सिंगल कॉम्पिटिशन इन विच एनी वन एंड एवरी वन इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज क्राइटेरिया, ग्रुप एंड एनीथिंग एल्स और नेशनैलिटी फॉर दैट मैटर। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ग्रुप हैं जो आप बहुत अच्छा पर्कशन म्यूजिक बजाते हैं या बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको लगता है आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, आप योग करते हैं, आप कथक करते हैं, जो भी आप एक मैजिशियन हैं यार, आप एक कलाकार हैं, जो भी आपके अंदर हुनर है, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको लगता है आप डुएट परफॉर्म करना चाहते हैं एंड इट इज एट पार, यू आर मोर देन वेलकम। आपको बस एक ही काम करना है कि एंट्री सबमिट करने के लिए आपको बनाना होगा अपना एक वीडियो, अपने टैलेंट को हाईलाइट एंड शोकेस करते हुए। वीडियो की ड्यूरेशन है 60 सेकेंड्स मैक्सिमम, कम से कम 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 60 सेकेंड्स। जैसे ही आप ये वीडियो बनाते हैं अपनी एंट्रीज आपको सबमिट करनी है बाय दिस सैटरडे ऑन 5001896। नोट डाउन द नंबर 5001896। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आपको अपना वीडियो भेजना है, कोई इंस्टाग्राम लिंक नहीं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट आप वीडियो जो है व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे एंड आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपने ग्रुप के नाम या अपने नाम के साथ आपको उस व्हाट्सएप में अटैच करना है। एंड फाइनली जब ऑडिशंस का सिलेक्शन किया जाएगा, अगर आपका हुनर इस कमाल हुआ कि अगले राउंड तक पहुंच सके तो 101% आपको लिया जाएगा। हर एक हुनर कमाल होता है यार, ये तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिसे फुलफिल करना है, बस और कुछ नहीं। तो फटाफट से एंट्रीज भेजने के लिए हो जाएं तैयार, एंड इस वक्त अगर कोई भी और डाउट है तो आप 5001896 पर मैसेज कर मुझे पूछ सकते हैं। चलिए जी, ये बात तो मैंने आपको बता दी, अब एक काम करते हैं, एक खूबसूरत सा गाना आपकी जिंदगी में पहुंचाते हैं। Now this song is from the film Once Upon a Time in Mumbai and Imran Hashmi and Prachi Desai पर पिक्चराइज्ड ये गाना। प्रीतम ने इसका म्यूजिक दिया, इरशाद कामिल के क्या कमाल के लिरिक्स हैं। चलिए गाना एंजॉय करें, लेकिन उसके पहले मोहित चौहान का मैजिक भी तो फील करना है। बंदी का नाम अंशु।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: दर्शन रावल की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, ये प्यारा सा गाना तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया रोचक कोहली के साथ, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी इस वक्त आपके सामने बयां करने की बारी आ ही चुकी है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. देखिए स्पोर्ट्स जो है ना ये बड़ी कमाल की चीज़ है, और अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी को देखने की कोशिश करें तो कुछ लोग सिर्फ एक गेम को खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस गेम की डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद उनमें से एक है। एक छोटे से आइलैंड मदेरा का एक लड़का जिसके घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। बचपन में घर छोड़ना पड़ा, माँ से दूर रहना पड़ा, तकलीफ भी हुई, लेकिन उस बच्चे ने एक फैसला कर लिया था कि सर्कमस्टांसेस उसकी पहचान नहीं लिखेंगे, उसकी मेहनत लिखेगी। और फिर शुरू हुआ एक सफर, स्पोर्टिंग लिस्बन से मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर से रियल मैड्रिड, फिर जुवेंटस, अल नासर, और हर जगह सिर्फ गोल्स नहीं बनाए बल्कि पूरी तरह से हिस्ट्री लिखी। रिकॉर्ड्स टूटते गए, स्टेडियम्स उसके नाम से गूंजते गए, और दुनिया ने देखा कि टैलेंट अप्लॉज दिलाता है, लेकिन डिसिप्लिन जो है ना यार आपको इमोर्टैलिटी दिखाती है। यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं है, वो हम सब के लिए एक रूटीन है, वो एक माइंडसेट है, वो हर उस इंसान का नाम है जिसने कभी अपनी जिंदगी में ये कहा हो कि भाई मैं जो हूं ना कल से आज बेहतर बनूंगा। कल के मैच के बाद, कल की उस हार के बाद उनकी आंखों में आंसू थे, और उन आंसुओं ने हमें एक बात फिर याद दिला दी, चैंपियंस कभी अपने इमोशंस नहीं छुपाते, क्योंकि उनके लिए जर्सी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती यार, वो ना उनकी रूह होती है। एक मैच हारा जा सकता है, एक ट्रॉफी छूट सकती है, लेकिन एक लेगेसी यार वो कभी नहीं हारती। और रोनाल्डो की लेगेसी सिर्फ गोल्स में नहीं लिखी गई, वो हर सुबह की ट्रेनिंग में लिखी गई है, हर सैक्रिफाइस में लिखी गई है, हर कमबैक में लिखी गई है, एंड हर बार जब जब दुनिया ने कहा कि अब खत्म हो गया है और वो फिर खड़े हुए, भाई हर मोमेंट ने उस बंदे ने अपनी लेगेसी लिखी है। अ लेजेंड, अ फिनोमिनन, एन इमोशन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो यार थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग द वर्ल्ड That greatness is never gifted, it is earned every single day. Hats off, salute to you. Sunte rahiye Mirchi, it's hot. Bandi ka naam Anshu.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
3: Our business is our business. None of your business.
4: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
5: entertainment. Qatar का number one radio station.
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Well, Javed Ali, Irfan Ashraf ki khubsurat si awaz, and what a lovely track it is, yaar. Kya pyara sa gana from the film Tum Mile that was released in the year 2009. And is film mein agar aapko koi nazar aaye to woh hai Imran Hashmi and Soha Ali Khan. And yaar, ek bar phir se kya kamal ki composition Pritam ki. And agar gaane ke shabdon ki baat karun, Sayyed Qadri ne kya jadu phailaya, yaar. Beautiful song.
1: Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu, Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Zindagi mein mithas ke saath spice ka tadka lagate hue ek baar phir se aa chuki hoon. And haan, iske saath hi koi to khaas baat hai jo aap tak pahunchana bhi chahti hoon. Well, agar is waqt hum Qatar ko dekhne ki koshish kare to bahut sari exciting activities jo hai na inki shuruaat already ho chuki hai. Now there is something that we are eagerly looking forward to kick starting. Jiske baare mein maine aapko pehle bhi bataya hai and I'm talking about Pakistani Mango Exhibition. Absolutely yaar. Pata hai mujhe सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि हम जब कतर में रहते हैं ना, यहाँ पे इतने सारे कल्चर के लोग हैं, इतनी सारी कंट्रीज से लोग आते हैं कि आप चाहे कहाँ से भी आए, एक बात तो तय है कि आपको मल्टी कल्चर जीने का मौका मिल ही जाता है. यार मैंने ऐसा सुना है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो जहाँ पे पढ़ना लिखना जरूरी है, अच्छा काम करना जरूरी है, वहीं आपके साथ ना दो एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए. एक तो ट्रैवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड दूसरा किताबों के अलावा एक ऐसी बात होनी चाहिए कि आप बहुत सारे कल्चर के लोगों से मिल सकें. जितना ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, उनके ट्रेडिशन को समझते हैं, उतना ज़्यादा आप जो है ना अपने आप में चेंज महसूस कर पाते हैं. एंड ज़रा सोचें, कतर में रहने के बाद ये काम तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली बाय डिफॉल्ट हमारे साथ हो ही जाता है. तो जब भी मौका मिले जिस कल्चर ट्रेडिशन को जीने का, उसे समझने का, उसे अच्छी तरह से हथियार लिया करो. भैया हम तो अभी फूड कल्चर को समझने के लिए पहुंचेंगे एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 9th of July से 18th of July तक, जब एक बार फिर से सूक वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में अगर हमें कुछ विटनेस करने मिलेगा तो वो है पाकिस्तानी आमों का खजाना, जो आम है लेकिन बड़ा खास एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में लेकर आएगा. चलिए जी, जितने भी पाकिस्तान के लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपको मुझे सबसे पहले ये बताना है कि आपके देश का वो कौन सा आम है जो सबसे ज़्यादा फेमस है एंड 101% मुझे उसकी पेटी तो घर लेके आनी ही आनी है. फटाफट से बताओ 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. अभी एक काम करते हैं, उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज़ में फ्रॉम द फिल्म मिशन कश्मीर आपको एक बहुत प्यारा सा गाना सुनाती हूँ फीचरिंग प्रीति जिंटा एंड ऋतिक रोशन. एंड अगर गाना पसंद आए तो थैंक यू मैसेज जरूर भेजना, इंतजार रहेगा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु.

0: Well, Arijit Singh and Shreya Ghoshal ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is. ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी फिल्म है जिसके बारे में आप मुझे बताएंगे। तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड हाँ, आज बॉलीवुड वाला सरप्राइज टेस्ट आपकी लाइफ में फिर से लेकर भी आ चुकी हूँ। करना क्या है जी, देखिए एक बहुत ही आइकॉनिक सी फिल्म है, बड़ी प्यारी सी फिल्म है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहूंगी उसकी एक कॉन्वर्सेशन मैं आपके बीच पेश करूंगी। एंड अगर आपने ध्यान से सुना ना तो आप रियलाइज करेंगे कि फिल्म का नाम क्या है। ये इस कॉन्वर्सेशन में आधा जवाब तो छुपा हुआ है। चलिए, आपको मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, अब यहाँ पे टेस्ट होगा आपके फोकस एंड अटेंशन का भी। तो आपको ये कॉन्वर्सेशन सुनना है, आइडेंटिफाई करना है, साथ मुझे ये बताना है कि ये फिल्म है तो है कौन सी। फिर तो क्या है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है इस फिल्म के बारे में होंगी। भैया बॉलीवुड रेडियो स्टेशन है, फिल्मों की दुनिया में खुद को ना डुबाएंगे तो फिर क्या ही करेंगे। लेकिन चलें अभी फिलहाल ये कॉन्वर्सेशन सुनने की कोशिश और तैयारी कर लें। एंड साथ ही अगर आपको लगे एक्टर्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कौन है तो उनका भी नाम बताना। 5001896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। हियर वी गो।
1: तुमने खाना खा लिया?
2: हाँ।
1: मेरे बगैर?
2: हाँ, तो हस्बैंड हो गया मेरे, कुछ बना के खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें नहीं आता ना खाना बनाना? शिट, से दिन भर कुछ नहीं खाया, बाहर से मंगवा लेते।
1: मन नहीं था मेरा,
2: भूख लगी है ना?
1: हाँ।
2: सिली से पहले बताते, अभी कुछ बनाते।
0: अब देखो यार, आधा जवाब जो है इस कॉन्वर्सेशन में छुपा हुआ है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये फिल्म है तो है कौन सी। 5001896 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल केके एंड शिल्पा राव की आवाज़ यानी अगला प्यारा सा गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieva la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
4: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
4: 33501।
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
5: हाय।
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए।
4: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
6: ये बेल जा रही है।
4: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये आपके
4: पास
2: है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस से पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
2: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
4: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, ये सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह
4: नहीं तो
2: थोड़ी ना।
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
7: विके, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
7: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
8: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
10: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
11: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
12: हिट गाने
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार ये गाना जो है ये किसी आशिकी से कम नहीं। वो कहते हैं ना यार ये कुछ गाने जो है सिर्फ सुने नहीं जाते, वो जेन्युइनली आपके दिल में बस जाते हैं। और ये एक ऐसा एवरग्रीन जेम है जो केके की सोलफुल आवाज में झनकार बीट्स फिल्म से है। देखिए इस फिल्म की म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करें तो इट वॉज बाय विशाल शेखर। इनफैक्ट लिरिक्स भी विशाल ने खुद लिखी, यानी फिल्म डायरेक्ट किया था सुजोय घोष ने। लेकिन अगर झनकार बीट्स इस फिल्म की मैं बात करूँ तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये फिल्म द लेजेंडरी आर डी बर्मन साहब के लिए एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट था। एंड क्या कमाल की म्यूजिक कॉम्पोजिशन यार। विशाल शेखर को इसी फिल्म के बाद बॉलीवुड के टॉप कंपोजर्स की लीग में माना गया। बढ़िया है जी।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: हेलो वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विथ यू। एंड आपने अभी जो मेरे सवाल का सही जवाब दिया है ना, उसके बाद एक बात तो तय है कि मैंने आपको भी अपने पक्का सबसे बड़े फॉलोअर की लिस्ट में शामिल कर ही लिया है। बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले आपने और हमने मिलकर खेला आज का बॉलीवुड वाला सरप्राइज टेस्ट, जहां पे एक कॉन्वर्सेशन मैंने आपके बीच पेश की थी एंड बताया था कि कॉन्वर्सेशन के अंदर ही सही जवाब जो है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आपको गौर फरमाना था, बस मुझे ये बताना था कि ये फिल्म है तो है कौन सी। एंड ये भी मैंने कहा था ब्राउनी पॉइंट जरूर मिलेगा अगर मुझे आर्टिस्ट का नाम आपने बताया। चलिए देखते हैं जो जो अभी ज्वाइन किए वो पहचान पाते हैं क्या। अभी सुनते सुनते भी अगर आइडेंटिफाई कर लिया जल्दी से करेक्ट आंसर है पहुंचा देना 5000 1896 पर। 5000 1896 पे विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल हियर वी गो।
2: तुमने खाना खा लिया?
3: हाँ।
2: मेरे बगैर?
3: हाँ तू हस्बैंड हो गया मेरे, कुछ बना के खा लो, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें नहीं आता ना खाना बनाना? शिट, दिन भर कुछ नहीं खाया, बाहर से मंगवा लेते।
2: मंगे था मैंने,
3: भूख लगी है ना?
2: हाँ।
3: सो सिली से पहले बताते, अभी कुछ बनाते हैं।
0: हाय हाउ स्वीट यार, क्या खूबसूरत और प्यारा सा रिश्ता। देखिए लोगों ने क्या कहा है।
4: हाय रेडियो, दिस इज रेहान, दिस मूवी इज वेक अप सेट।
5: हाय अंशु, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग फाइन। मूवी का नाम होगा विकअप सिद्ध।
0: हाँ जी, आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही। अगर इस फिल्म की हम बात करें तो यार इस फिल्म का नाम है वेक अप सिद्ध। देखिए बात इतनी है कि कभी कभी लाइफ में ना किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती, हमें बस एक वेकअप सिद्ध की जरूरत होती है। साल 2009 में रिलीज हुई ये कमिंग ऑफ एज क्लासिक फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि पूरी जनरेशन के लिए ना कहीं एक रियलिटी चेक थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया डेब्यूटेंट आयान मुखर्जी ने एंड प्रोड्यूस किया करण जौहर ने। और इस फिल्म में अगर हमें कोई नजर आए तो वो है रणबीर कपूर एंड कोंकणा सेन शर्मा अलॉन्ग विद अनुपम खेर। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयान मुखर्जी ने ये स्क्रिप्ट रणबीर कपूर को ध्यान में रखकर ही लिखी थी एंड एक ऐसा गाना बस ये वाला जो पूरी तरह से एक कल्ट क्लासिक बन गया। कि आप जानते हैं कि ओरिजिनली ये साउंडट्रैक इस फिल्म का हिस्सा था ही नहीं, इट वाज लेटर एडेड एंड इट वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ बॉलीवुड्स मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स। एंड एक सबसे फन फैक्ट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो फिल्म की ओपनिंग सीक्वेंस में रणबीर कपूर ने जितनी डजन्स ऑफ कलरफुल वो जो बॉक्सेस पहने थे ना, वो दरअसल उनकी खुद पर्सनल कलेक्शन में से थी। इतनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी इस फिल्म में दिखाई गई। यार मैं इतना जानती हूँ कि इस फिल्म ने ना हमें एक सिंपल सी बात जरूर सिखाई है कि लाइफ तब बदलती है जब आप किसी और को नहीं खुद को डिस्कवर करना शुरू करते हैं। और इसी खूबसूरत जर्नी को और भी यादगार बनाया था इस फिल्म के बहुत प्यारे से म्यूजिक ने। तो चलिए कविता सेठ अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में इस फिल्म का सबसे पॉपुलर ट्रैक मैं आप तक पहुंचा दूं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: What a lovely power pack track it is. यार ये गाना ना मेरी लाइफ में 101% एक मूड लिफ्टर का काम करता है फ्रॉम द फिल्म सलामे इश्क इटसेल्फ. एंड क्या कमाल का म्यूजिक बाय शंकर एहसान लॉय. एंड यार इस फिल्म में अगर किसी ने चार चांद लगाया ना तो इन सब के कॉम्बिनेशन ने मतलब इतने सारे लेजेंड्स जब एक साथ किसी गाने को गाने आ जाएं जरा सोचें. सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, साधना सरगम, शंकर महादेवन, एब्सोल्युटली यू हर्ड दैट राइट. एंड उतने ही बड़े स्टार कास्ट के लाइनअप को इस फिल्म ने पेश किया. द लिस्ट इज रियली लॉन्ग. अब आप जो है वो खुद पता कर लें क्या कहती पब्लिक.
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर दुनिया में देखने की कोशिश करें तो बुखार जो है वो सॉलिड तरह से चढ़ा हुआ है. सबसे तेज बुखार अगर किसी का है तो वो है इस वक्त वर्ल्ड कप का, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का. Well, इतना ही कहना चाहूंगी अगर आपको लगता है कि जितना भी थ्रिल एंड एक्साइटमेंट हो रहा है आप उससे बिल्कुल 101% लाइव विटनेस करना चाहते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. आप बिल्कुल लुसेल पहुंच सकते हैं जहां पर ना ही सिर्फ मैचेस की लाइव टेलीकास्टिंग हो रही है बल्कि इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एक्टिविटी भी हैं जो हर किसी के लिए जो आप 101% एंजॉय कर पाएंगे. या आई ट्रूली बिलीव जब फीफा वर्ल्ड कप कतर हुआ था बहुत सारे लोग जो घर पे बैठे हुए थे ना तब भी मैं उनसे एक बात कहती थी कि ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं वो तो इररिस्पेक्टिव कि आप सॉकर यानी कि फुटबॉल के फैन हैं या आप नहीं हैं, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में आता है. एनवायरमेंट को समझने के लिए, वह कंपेटिटिव स्पिरिट को समझने के लिए, उस माहौल को समझने के लिए खुद भी जाएं, अपने बच्चों को 101% साथ में लेकर जाएं. इनफैक्ट अभी भी जितने भी मैचेस आ रहे हैं अगर आप हो सकता है उस टाइम पे आप जाग पाते हैं यार खुद तो देखो लेकिन अपने बच्चों को ये मैचेस जरूर दिखाओ. इट इज ऑल टुगेदर ऑन इट्स ओन अ कंप्लीट लाइफ स्किल जब आपको इस मैचेस को देखने को मिलेगा और समझ में आएगा. बीट रेजिलियंस, बीट हार्डवर्क, बीट डेडिकेशन, जीत हार की परिभाषा, ये सारी बातें जो है ना ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी गेम को इंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको पसंद है या ना पसंद है, लेकिन जिंदगी के इन बेसिक उसूलों को सीखने के लिए ऐसे मैचेस को देखना बेहद जरूरी है. चलिए जी अगर मेरी बात से अग्री करते हो तो मुझे एक थम्स अप भेजो. 5000 1896 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल एक बहुत ही इंडिपेंडेंट सा प्यारा सा गाना है शान की आवाज में जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अरिजीत सिंह एंड तुलसी कुमार की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, क्या प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म एयरलिफ्ट। उसे चलिए काम करते हैं, आपको ना इस फिल्म की और इस गाने की खासकर एक कहानी बताते हैं। वेल, एयरलिफ्ट फिल्म में साल 2016 में जब ये गाना आया तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये गाना साल 2016 का वन ऑफ द बिगेस्ट रोमांटिक ट्रैक्स बन जाएगा। इनफैक्ट इसे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड भी दिया गया उस साल, द बेस्ट लिसनर्स चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर। लेकिन खास बात यह है कि अगर इस गाने की हिस्ट्री को आप देखेंगे तो ये गाना है एक री इमेजिंड वर्जन ऑफ द पंजाबी हिट सोच दैट वॉज बाय हार्डी संधू। एंड इस गाने को लिखा था जानी ने एंड म्यूजिक दिया था बी प्राक ने, लेकिन अमाल मलिक ने इस गाने को अडेप्ट किया, ब्यूटीफुली से एयरलिफ्ट में इनकॉर्पोरेट किया, भाषा बदल कुछ उस तरह से इसे पेश किया कि भाई अपने आप में ये गाना नया लगने लगा। ये चलो इस वक्त एक काम करते हैं, जिंदगी के बारे में कोई तो बात करते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करूँ ना तो एक शब्द जो मेरी ज़िंदगी को बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरह से डिफ़ाइन करता है तो वो है ख्वाब, ड्रीम्स, शायद डिज़ायर्स। यार ख्वाब, ये शब्द जो है ये कितना खूबसूरत सा लफ्ज़ है ना। आंखें बंद करके तो हर कोई इसे देखता है, लेकिन आँखें खोल कर उनके लिए जीना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए रोज़ खुद को तराशना, मुझे लगता है शायद वही हमारी असली कहानी है यार। देखो, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई ख्वाब होता है और हर ख्वाब के पीछे हजारों दिनों की वो मेहनत जो शायद किसी को नजर नहीं आती। यार जब दुनिया सो रही होती है ना तब कोई अपनी तकदीर लिख रहा होता है, जब लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं तब कोई अपने सपनों की बुनियाद मजबूत कर रहा होता है। ख्वाब कभी उन लोगों को नहीं होते जो शायद सिर्फ इंतजार कर रहे हों। यार मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाब उनके होते हैं जो हर दिन अपनी कोशिश से उसे बस हकीकत बनाने की पूरी उम्मीद में लगे रहते हैं। और मेरे पापा ने कुछ तो बहुत खूबसूरत लिखा है इस पे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि ख्वाब अगर सच्चे हों तो रास्ते मिल ही जाते हैं, हौसला अगर जिंदा हो तो फासले सिमट ही जाते हैं, मेहनत की रोशनी कभी बेकार नहीं जाती, जो जलते रहते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल से लिपट ही जाते हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि ख्वाब देखिए मगर सिर्फ सोने के लिए नहीं, ऐसे ख्वाब देखिए जो आपको हर सुबह उठने की एक नई वजह दें। देखो अगर बात अच्छी लगी तो यार एक थैंक यू मैसेज तो बनता है। 5000186 5000186 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कथरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल हर मैदान को पता करना है सुखविंदर सिंह एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये अगला गाना फ्रॉम द फिल्म संजू आपके लिए। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Weather Check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
1: राइट अप, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया एक बार फिर से केके की आवाज में, लेकिन मौसम का जादू आज क्या कहता है जरा ये भी आपको बता ही दें।
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to Meet Him Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड आज ना जाने क्यों बचपन की कोई तो बात है जो मुझे बेहद याद आ रही है। यार अगर मैं बचपन के दिनों में गर्मी के मौसम को याद करने की कोशिश करूँ तो मुझे सबसे पहले अगर कोई घर, कोई ठौर ठिकाना याद आता है तो वो है मेरी नानी का घर। देखिए यार, वो दिन हमारे बचपन के दिन क्या अलग हुआ करते थे कि हर साल जैसे ही वेकेशन आता है हमें पता होता था कि अगर हमारा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नानी का घर। अरे ना, उस वक्त किसी आइटिनरी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस वक्त ढेर सारे लोकेशंस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सालों साल बस हम एक जगह जाया करते थे लेकिन हर साल अपने साथ एक नया एक्सपीरियंस लाया करते थे उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं किस्सों में, उन्हीं कहानियों में। ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत खुशियां हमने कब ढूंढ ली, इतनी सारी यादें कितनी बना ली कि हर एक याद जो है शायद उस पुरानी बात से जुड़ी हुई है लेकिन कहीं ना कहीं एक नई और एक खूबसूरत लिखी हुई कहानी है। आज जब गर्मी का दिन आता है तो न जाने हम कितने प्लान्स बनाते हैं कि यार 15 दिन घर जाना है लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ नई जगह तो ज़रूर एक्सप्लोर करनी है। कभी उन पुराने पन्नों को पलट कर को देखो, उन पुराने घरों में नई यादों को फिर से बनाने की या बसाने की कोशिश तो करके देखो। जो पल, वो लम्हे जो हमने उस वक्त उस दौर में जिए ना, शायद आज ऐसा महसूस कर पाना बहुत मुश्किल है यार। लेकिन कुछ तो है जिसे मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ।
3: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट।
1: वेल, अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को हम देखने की कोशिश करें सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 47, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 35। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, पुरानी यादों से कलेजे में ठंडक लाते रहें। बाकी अच्छे गानों के साथ, अच्छी बातों के साथ मैं तो हुई है जिंदगी में खुशी का बहार लेकर और हाय वो गर्मी में ठंडी का एहसास लेकर। वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
0: वेदर चेक, ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
1: वलरित सिंह एंड शिल्पा राव की आवाज और एक बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म लाल सिंह चड्ढा, राइट हियर फॉर यू, एंजॉय। गाना पसंद आए तो एक थैंक यू मैसेज जरूर भेजना 5000186। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। एंजॉय।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: wirwa la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी,
2: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी,
2: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं कोई नहीं है।
2: ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा, आप फिक्र मत करो। वो बंदा ही
1: हेलो।
2: हाँ बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा भाई?
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है? क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
1: नहीं
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
1: नाम बता पहले।
2: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: तो सिर्फ चोरे करें,
5: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन,
11: इट्स हॉट।

0: अभिजीत की खूबसूरत सी आवाज़, उन्होंने लवली लवली ट्रैक इट इज़, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कोई दूसरी खास बात बता दूं?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. भाई साहब, कहाँ के लिए निकले हैं? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? नहीं, आपकी कहानी मैं ज़रूर सुनूंगी, आपसे आपकी सारी दास्तान ज़रूर पूछूंगी, लेकिन चलिए सबसे पहले इस फिल्म की बात करते हैं जिसने जेन्युइनली हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारा जोश लेकर आया था. देखो, साल 2000 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, एंड इस फिल्म में अगर आपको कोई नज़र आए थे तो वह हैं शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, चंद्रचूड़ सिंह एंड साथ ही प्रिया गिल. एंड वैसे इस गाने की बात करूँ तो इसे बहुत ही प्यारी तरह से अगर किसी ने गाया तो वह हैं अभिजीत भट्टाचार्य, म्यूज़िक वॉज बाय अनु मलिक. लेकिन पता है बात क्या है, शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ज़माने के इनफैक्ट आज भी सबसे बड़े स्टार्स रहे हैं, लेकिन जब तक ये फिल्म रिलीज हुई थी अंटिल देन दे वर नॉट पेयर्ड रोमांटिकली एट ऑल. जोश में इन दोनों ने ट्विन सिबलिंग्स का रोल निभाया था, अगर आपको याद हो, मैक्स एंड शर्ली. एंड ऐश्वर्या का जो इंटरेस्ट था इस फिल्म में वो इस बात को लेकर था कि फाइनली इनकी पेयरिंग जो है वो शाहरुख खान के साथ हो रही है. जोश के बाद इन दोनों की पेयरिंग सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि लोगों को लगने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो रोमांटिक फिल्म्स हैं ना वो आनी चाहिए. उसके बाद हमने देखा मोहब्बतें आई, देवदास आई, ऐदिल है मुश्किल एक स्पेशल अपीयरेंस ही, लेकिन मोहब्बतें देवदास के बाद एक पल के लिए शाहरुख खान इतने इनसिक्योर हो चुके थे क्योंकि उन्हें यह लगता था कि कहीं ना कहीं उनके अलावा जब भी ऑन स्क्रीन में ऐश्वर्या होती हैं उनके परफॉर्मेंस को या उनके प्रेजेंस को वो डोमिनेट करने लगती हैं. ऑर्गेनिकली उनके मन में ये ख्याल आने लगा एंड उसके बाद न जाने क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑन स्क्रीन पेयरिंग में ऐश्वर्या के साथ नहीं आएंगे. एंड ऐश्वर्या को बैफल्ड क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये है तो है क्यों, जबकि जिन जिन फिल्मों में ये दोनों एक साथ आए भाई वो फिल्म ने कुछ इस तरह का तहलका मचाया कि उसे शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल था. मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ ना जाने लोगों को कितने बड़े एक्सपीरियंस से दूर रखती है. अब इन दोनों का साथ ना आना ये सिर्फ इन दोनों की केमिस्ट्री की बात नहीं थी, हम एक बॉलीवुड फ़ैन की बात करें या हम उन लोगों की बात करें जिन्हें इन दोनों की पेयरिंग इतनी पसंद थी, ना जाने अगर ये दोनों और ऑन स्क्रीन साथ आया करते तो आप सोचें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की कितनी नई मिसालें हमको और देखने को मिलती. चलिए आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर बॉलीवुड फिल्म्स की पेयरिंग्स की मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से वो कौन सा कपल है जो ऑन स्क्रीन आज तक सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा है? 5000 1896 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल मोनाली ठाकुर की आवाज़ एनी अगला प्यारा सा गाना आपके लिए. एन्जॉय. पंडी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: What's it saying here? खूबसूरत सी आवाज़ और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म सोनू के टिट्टू की स्वीटी. सच कह रही हूँ यार, अगर आज के जनरेशन में दोस्ती का कोई एंथम मुझसे पूछे ना भाई, तो ये गाना जरूर है.
1: मिर्ची अंशु.
0: तो हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे यार, ये गाना जो मैंने अभी भी तुम्हारे लिए बजाया, क्या हलचल जरा ये तो बता दूँ. मतलब जिंदगी में खुशी है तो अपरंपार अभी तक हुई या ना हुई, देखो मैं ना तुम्हें खुश करने के आए दिन हर एक रीजंस देती रहती हूँ. सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी जिंदगी की यही होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ. मतलब सोचो मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी हो तो कितनी ज़्यादा हो. अच्छे गाने कौन सुनाएगा, अच्छी बातें कौन करेगा, अच्छी तरह से तुम्हारी थकान कौन दूर करेगा, ये सारा काम जो है ना ये मिर्ची की वजह से होता है. तो कुछ करो ना करो, लेकिन सबसे पहले मुझे ना तुम एक थैंक यू मैसेज भेजोगे 5000 1896. आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. लेकिन मीन वाइल खुशी की एक दूसरी वजह लेकर एक बार फिर से मैं आ ही चुकी हूँ. भाई साहब देखो, जब भी ये लगे ना, ये महसूस हो कि नेचुरल ऑर्गेनिक इंक्रीमेंट हो चुका है,

तो ऑर्गेनिकली जिंदगी में खुशी जो है ना आ जाती है। अब इस बात की उम्मीद जो है हमने अपने बॉस से करनी तो छोड़ दी है। तो भैया बॉस ना सुने लेकिन यूनिवर्स हर एक वजह दे रहा है, वो रीजंस कंस्पायर कर रहा है कि लाइफ में पैसे को लेकर बढ़ोतरी यानी कि इंक्रीमेंट जो है ना वो होते रहे। जरा देखते हैं कि आज आईपीएल में अच्छे पैसे की क्या बहार है। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.10, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.52, नेपाली रुपीज 41.79, बांग्लादेशी टाका 33.91, लंगन रुपीज बजाते हुए डंका पहुंच चुका है 91.78 पर। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। मसलामा हबीबी, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। अंटिल देन यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर रियली प्रेशियस टू मी। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। करेंसी एक्सचेंज इज ब्रॉट टू यू।

0: बचपन में हमने सुना था कि किसी बंदे को अगर जज करना हो ना तो उसके शूज से करें। आप अभी भी ये फॉलो करते हैं या आपने भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से जज करना शुरू कर दिया है?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और शूज से किसी बंदे की पर्सनालिटी चेक करने का मतलब मुझे तब तो समझ में नहीं आया था जब इसके बारे में सुना था बचपन में कि आखिर शूज में देखना क्या है। और मेरे भी स्कूल शूज के सोल्स मोची की स्टिच से सिले हुए होते थे, तो ये पॉइंट तो मैं काउंट ही नहीं करती कि अगर जूतों में जोड़ है तो इंसान की शख्सियत ही सही नहीं। लेकिन आज जब मैं एक पब्लिक प्लेस में थी तब अचानक मैंने एक बंदे के शूज नोटिस किए जो बहुत गंदे लग रहे थे। हालांकि उसके कपड़े एकदम टिप टॉप थे और मेरे दिमाग में एक डायलॉग पॉप अप हुआ अपने आप कि कितना लेजी है ये बंदा। और सच कहूं तो मुझे ये बात एक्चुअली आज समझ आई कि जब आपको जूते देखकर पर्सनालिटी जज करने को कहा जाए ना तो इट्स अ हम्बल वे टू जज द पर्सन, ना कि जजिंग द पर्सन फॉर हिज वेल्थ। लाइक आई रियली लाइक वेयरिंग कोल्हापुरीज एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लैट सैंडल्स, जिसका मतलब ये हुआ कि आई लाइक माई कम्फर्ट मोर देन लुक्स, और हील्स मुझे इसलिए इतनी अपीलिंग नहीं लगती है। वैसे आपके सामने इस वक्त जो भी इंसान है उसके फुटवेयर देखकर आपको उस इंसान के बारे में क्या समझ आ रहा है? आई एम क्यूरियस टू नो। डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, एंड लेट्स किक स्टार्ट मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए। वैसे 90s में तो हमने आज हो रही काफी सारी चीजों को नहीं सोचा, लेकिन आज जीने के बाद अब काफी कुछ सोचा है। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: के पास है क्या ये सर्विस?
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस
2: सर? आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो भी मशीन चलाने आती भी है
2: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहे तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा, दोनों
0: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: आज वीसीआर पर मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें हीरोइन का नाम दया शंकर था और हीरो का नाम उमा पार्वती।
1: मिर्ची वीसीआर।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा और राम गोपाल वर्मा की दौड़। देखो, दौड़ अपने टाइम में दौड़ी तो डेफिनेटली नहीं, बट बेचारी चली भी नहीं। उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त स्टारर ये मूवी लोगों को भले ही उस टाइम पर नहीं समझ में आई हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। लाइक चाकू की एंट्री वाला सीन आपको याद है? वो सीन मुझे बहुत ही हिलेरियस लगा था। एंड बाय द वे, आपने मूवी के म्यूजिक में दौड़ को दौड़ सुना होगा? Well, that was actually a mispronunciation by Rehman साहब, जिसे लोगों को ये लगा था कि ये मूवी जो है it's about the Don दाऊद इब्राहिम। ये मूवी तो दाऊद पर नहीं थी, लेकिन इस मूवी से राम गोपाल वर्मा को अपनी सत्या के लिए एक डॉन जरूर मिल गया था। कौन था वो बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

रामगोपाल वर्मा मनोज बाजपेयी को दौड़ में कास्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं कि उनका काम अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसीलिए कि उनका काम इतना अच्छा लगा कि दौड़ का छोटू मोटू सा रोल देने के लिए उन्हें लगा कि यार ये ऐप नहीं है, इन्हें तो भिखू मात्रे का रोल देना चाहिए। Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड मनोज बाजपेयी जब दौड़ के विलेन के छोटे से रोल के लिए राम गोपाल वर्मा से मिले थे तो आरजीवी वाज शॉक्ड टू नो कि मनोज इज द सेम गाय फ्रॉम बैंडेड क्वीन, और उन्होंने मनोज को कहा कि वो यार इतना छोटा रोल डिजर्व नहीं करते हैं, एंड देर आर बेटर थिंग्स लाइंड अप फॉर हिम लाइक भिखू मात्रे इन सत्या। लेकिन फिर भी मनोज वांटेड टू डू दिस छोटू सा रोल बिकॉज उनके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे एंड ही नीडेड द मनी, और यूं मनोज बाजपेयी दौड़ और सत्या का हिस्सा बने। हालात उस टाइम पर ऐसे थे कि बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान भी हानिकारक था उनके लिए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री?
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो।

0: अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ?
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिल्कुल बेसिक से सेटअप वाले ये डांस रियलिटी शो ने अपने टाइम में कितनी आग लगाई थी यार.
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the show that I'm talking about is A डांस रियलिटी शो जो जब आया था तब उस दौर में जजेस का रोना, टीआरपी के लिए पर्सनल लाइफ को धोना कुछ नहीं हुआ करता था. होता था तो सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्टेस्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मर यूज्ड टू विन. इस शो को याद कर रही हूँ तो यूं लग रहा है कि यार लाइफ यूज्ड टू बी सो सिंपल इन दोज डेज. नावेद, जावेद और रवि जो कि इस शो के कर्ता धर्ता और जजेस थे, दे यूज्ड टू क्रैक द ऑडियंसेस विद देयर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई फील दे वर द मोस्ट ऑनेस्ट एंड नॉन स्क्रिप्टेड जजेस टिल नाउ. व्हाट डू यू से? बूगी बूगी अगर आज वापस आए तो कौन जजेस हो और किस तरह से वापस आए? डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अभी के लिए अगला गाना आ रहा है, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची.

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए
3: सर, हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, तो हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
5: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा
8: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
9: थैंक यू।
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
12: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
10: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कैलाश खेर की आवाज में ना मंडे मोटिवेशन के लिए ये एकदम एप्ट गाना है बॉस, कि अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे। वाकई में यार, मंडे के दिन ना कोई एक वजह मिल जानी चाहिए हमें बस, कि हम मुस्कुरा दे किसी तरीके से, नहीं क्या? और बात भी कितनी सही कही है कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। मतलब ये जो हम टूट जाते हैं ना संडे के बाद मंडे को, कि यार अब कैसे गुजर होगा, संडे खत्म हो गया, वीकेंड चला गया, वीकडे शुरू हो गया, कैसे जिएंगे हम। लेकिन वही वाली बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब ऊपर वाले को याद करते हुए मेरे यारा, टाइम इज फॉर मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों की पहचान आपको करनी होती है जिन्हें की मिक्स करके मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और आज का जो मिक्स है वो है कुछ यू।

बस जी, अब सिंपल सा काम है, कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि आप मुझे डीएम करेंगे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, इन दोनों गानों के नाम और अपना नाम लिखकर मुझे फटाक से भेज दो, एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I don't know about you कि आप कितने आमिर फैन रहे हो, लेकिन मैं इतनी आमिर फैन रही हूँ कि मैंने मेला फिल्म भी देख डाली है. और मेला फिल्म का एक सीन ऐसा है जो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And धर्मेश दर्शन की डायरेक्टेड मेला मूवी में there is this one scene जहां पर आमिर खान और उनके जो भाई हैं फैसल खान, उन दोनों का एक सीन चल रहा है जिसमें कि वो ट्रक में ट्रैवल कर रहे हैं एंड आमिर खान को बहुत ही इमरजेंसी में पी करना था. फैसल खान डज नॉट स्टॉप द ट्रक और आमिर खान एक बॉटल में यस. तो क्या है कि इस सीन के अंदर देयर कम्स अ पुलिस वाला विच इज प्लेड बाय जॉनी लीवर एंड वो सीन जो है वो काफी हिलेरियस हो जाता है बिकॉज जिस बॉटल के अंदर आमिर खान ने वो लिक्विड रखा था, वेल दैट बॉटल द पुलिस वाला थिंक्स इज अल्कोहल और वो उसको जब्त करने के लिए सोच रहा होता है और उसको चख लेता है. सो दिस सीन जो क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट नहीं हुआ है, एक्चुअली रिक्रिएट हुआ है. And this scene is exactly copied from a film जो 1994 में बनी थी in Hollywood, Dumb and Dumber. And Dumb and Dumber में इस scene में there was Jim Carrey and Jeff Daniels who played the role of Faisal Khan and Aamir Khan. तो Dumb and Dumber way too better है मेला से, but हाँ, मेला जो पूरी थी थकेला, इस scene की वजह से थोड़ी बेहतर हो गई थी. Coming up the next track with this, you stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
0: बॉलीवुड बोल डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत इरेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।
2: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: क्या आपको पता है कि जब कोई बाथरूम जाया करता था तो हमें ऐसा क्या होता था कि बाथरूम की लाइट बंद करना कंपलसरी सा लगता था हमारी बॉडी को।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, हम 90s kids के दिमाग बड़े वेले हुआ करते थे यार। और शायद यही वजह थी कि हम अपने भाई बहनों को परेशान करने के लिए नए नए तरीके निकाला करते थे, और उनमें से एक तरीका था बाथरूम की लाइट बंद करके भाग जाना। पर मुसीबत तो तब होती थी ना जब कोई हमारे साथ बदला निकालते हुए सेम चीज करता था। तब सोने पर अभागा ये होता था कि यार लाइट तो वो लोग बंद करके जाते ही जाते थे, और साथ में रिसेंटली वॉच्ड हॉरर मूवी के किसी कैरेक्टर का नाम भी याद दिला दिया करते थे कि देख देख पीछे से सामरी का हाथ आ रहा है। और ये जानते हुए कि एक प्रैंक है, मैं वो सब इमेजिन कर लिया करती थी जो उन लोगों ने कहा है। मैंने कहा ना, हम 90s किड्स बड़े वेले हुआ करते थे। वेलेपन में आपकी क्रिएटिविटी कैसे काम में लिया करते थे? Do DM me on my Instagram handle which is Mirchi Sara. And now comes that गाना जो मेरे 90s के दिल को एक्सप्लेन करेगा। So stay tuned with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vidva la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Hello, Tejinder ji.
2: हाँ जी
3: तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
2: जी, हाँ जी किया था।
3: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
2: कितना लेट मिलेगा
3: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
2: हाँ जी,
3: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
2: 3.5 महीने बाद?
3: हाँ जी
2: भाई साहब। तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
3: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
2: नहीं, कोई नहीं है।
3: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
2: अच्छा।
3: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
2: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
3: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
2: हेलो।
3: हाँ बोलिए बोलिए।
2: क्या बोल रहा भाई?
3: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
2: मैं बोल रहा हूँ,
3: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
2: क्या बोल रहा है?
3: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
2: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
3: यार। आप मेरी
2: तेजेंद्र जी, नहीं
3: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
2: नाम बता पहले तू, कौन रहा है?
3: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ही दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
4: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: पापड़।
1: यादों को चिट्ठी।
0: तुम आम नहीं, बड़े खास हो, बचपन का खट्टा मीठा एहसास हो, पर जाने मार्केट में क्या हलचल हुई कि अब तुम फिजिकली दूर हो, लेकिन स्टिल दिल के पास हो। वो पीली पन्नी में बंद के तुम आते थे और अपने अंदर खट्टे मीठे स्वाद जो तुम लाते थे, आज इंटरनेशनल चॉकलेट्स तक घर पर आ जाती हैं, पर उनमें भी तुम जैसी बात नहीं आती है। परत परत बारीकी से निकाल कर तुम्हें हम खाते थे, एक पैकेट जितना लंबा चल सके यही हम दिल से चाहते थे। बिंजिंग के नाम पर आज जाने क्या क्या खा लिया जाता है, फिर भी रूह कहती है मजा नहीं आता है। तुम आ जाओ नजर किसी किराने की दुकान पर तो मजे भी कहेंगे कि देखो हमारा प्यारा आम पापड़ आया है। कई दुकानों पर तुम्हारे लिए पूछा लेकिन तुम कहीं मिले ही नहीं। और फिर एक दिन मेरी कजिन ने तुम्हें और तुम्हारे जायके को जुबान पर जब बिठाया ना तो तुम्हारी यादें और ताजा हो गई। मिस यू माय बचपन के डिजर्ट एंड स्नैक प्यारे आम पापड़, तुम्हारी सारा। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो आपको यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: देखो प्यार हुआ इकरार हुआ लेकिन प्यार के साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं और मैं इन दोनों गानों के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कैसेट के साइड ए का ये चौथा गाना इज दिल क्या करे।
0: मिर्ची 90s कैसेट
1: अदनान समी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म सलामे इश्क इज सच अ मेलोडियस ट्रीट टू आवर इयर्स। हाँ एंड वाकई में ये सारे के सारे जो सिम्टम्स इस गाने में बताए गए हैं ये सब प्यार के साइड इफेक्ट्स हैं कि बाहर कुछ और हो रहा है और अंदर हमारे कुछ और ही हो रहा है टोटली ऑपोजिट जैसे कि ये

जरा सोचो, बरसात में भी कोई जलता होगा? ऑफ कोर्स, जिसने मोहब्बत करी है वो बरसात में ही जलता है। और जब प्यार होता है ना, तो इंसान कहाँ होता है उसे खुद भी पता नहीं होता है यार, क्योंकि इंसान जहाँ होता है वहाँ पर तो उसका ध्यान लग नहीं रहा होता है। दिन भर कुछ मिस करता है, जाने कैसी ख्वाहिश करता है, भीड़ में तन्हा रहता है, दिल क्या करे। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक फॉर यू, लेकिन इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा अगर मुझे कहीं ढूंढना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ना, बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो एवरेज इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment.
6: Qatar ka number one radio station.
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन बताइए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए?
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: जरूरी नहीं कि हर मुसाफिर को मंजिल मिल ही जाए, कुछ को सफर अधूरा छोड़ना ही पड़ता है। और ये ख्याल कल रात मुझे आ गया। क्यों आया वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम बता दूं, 4:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और मेरी ये जो बात मैंने अभी से थोड़ी देर पहले कही है, यस, कि हर मुसाफिर को मंजिल नहीं मिलती, वो इसीलिए कहा क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल, बहुत अकॉम्प्लिश फुटबॉलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेंस इंटरनेशनल गोल की बात करें, 146 यूएफा चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी, उसके बावजूद पोर्चुगल के हाथों में वर्ल्ड कप देखना एक सपने सा ही रह गया। रोनाल्डो, जिनको लोग मजाक में बचपन से क्राई बेबी कहते थे, क्योंकि जब भी उनकी टीम ना कोई स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस करती थी वो रोने लगते थे, लेकिन कल वो एक आखिरी बार रोए जब उनकी टीम ने शायद ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिस की और वो वर्ल्ड कप में आखिरी बार नजर आए। इतना ही कहूंगा कि जरूरी नहीं कि हर किसी को मंजिल मिले। रोनाल्डो साहब, आपने जो इज्जत और शोहरत कमाई है फुटबॉल जगत में, वो पूरी दुनिया आपको जानती है, इससे ही पता लगता है। इस उम्मीद में कि कोई नया रोनाल्डो आएगा, क्योंकि मैं ये हमेशा मानता हूं लेजेंड्स कभी रिटायर नहीं होते, वो लाखों को अपने जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। एंड दैट सेम फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जाते जाते उनकी विदाई का गाना मिर्ची पर हम बजा रहे हैं, इट्स हॉट। बाय बाय रोनाल्डो।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hi, ye call बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है, एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना,
3: हाँ?
4: धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया। हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तू एक बात सुन, ये
3: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501। हाँ सर, 33501।
1: हेलो।
3: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किससे पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
3: है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे मैं कुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कतर इसे आसानी से कर रहा है।
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: अरे अपने उस कमिटमेंट को पूरा कर रहा है जो उसने कहा है कि वो अपने यहाँ कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ाएगा, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देगा, उस पर कमिटमेंट को पूरा करते जा रहा है हमारा कतर।
2: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, इसे मैं इको फ्रेंडली या यूं कहूंगा एक ऐसे प्राउड न्यूज जो कि कतर म्यूजियम्स की वजह से कतर के हाथ लगा है। यस, यहां पर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया हमारे कतर ने। वेल बता दें, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, फायर स्टेशन और अल जुबारा फोर्ट को अब ऑफिशियली कार्बन न्यूट्रलिटी सर्टिफिकेशन मिल गया है। यस, और ये बात क्या है, अल जुबारा फोर्ट पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अब ऐसा पहला यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज बना है जहां पर कार्बन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए उसे ISO स्टैंडर्ड दिया गया है, यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी का वो सर्टिफिकेट जो अभी तक मिडिल ईस्ट रीजन में और किसी भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स या साइट को नहीं मिल पाया। अगर आप मेरी बात करें तो बस मैं इतना ही कहूंगा, ये कमाल है और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टेप है। पूरी दुनिया के लिए हमेशा कतर एक मिसाल बन रहा है और जिस तरह से कतर सस्टेनेबिलिटी को लेकर सीरियस है, बाकी सारी कंट्रीज हमारे कतर से ही सीखेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे यही लगता है आने वाले टाइम में, ये तो बस शुरुआत है, कतर का हर बड़ा इंस्टीट्यूशन, उसकी बिल्डिंग, सब कुछ सस्टेनेबिलिटी और कतर नेशनल विजन 2030 से ऐसा लाइन करेगी कि हम दुनिया के इकलौते देश बनेंगे जहां सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स होंगे जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी सर्टिफिकेट पर आएंगे। बस उम्मीद कीजिए, इस पर यूं ही काम करते रहे, थोड़ा फर्ज हमारा भी बनता है। अगर अगली बार अगर आप रिफ्यूज करें किसी प्लास्टिक प्रोडक्ट को, रीयूज करें या फिर रिसाइकिल करें तो ज्यादा बेहतर है। मिर्ची इट्स हॉट।
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100813।
7: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
2: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: शाल मलिक खोल गले बेनी दयाल के पास में गाना सुनाया देसी रोमांस का किसने, लेकिन देसी जुगाड़ लगाते रहिए अपनी गाड़ी को ठंडा रखने के लिए क्योंकि मौसम अभी भी गर्मी देने वाला ही है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। देखिए भाई, दिन का मैक्सिमम तापमान एक बार फिर से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, मिनिमम अराउंड 34 आएगा और हवाओं की रफ्तार से तो आज लू के थपेड़े मुंह पे ऐसे लग रहे मानो किसी ने ऊपर वाले ने अपना गर्म कूलर ऑन कर दिया हीटर वाला। हाँ जी, 29 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हवाएं हमें जबरदस्त गर्मी की फीलिंग तो दे रही है और पिछले दिनों के मुकाबले आज टेम्परेचर काफी हाई है। कोई बात नहीं, आप पानी पीने की कैपेसिटी को हाई कीजिए, खूब पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए और कोशिश यही कीजिए ऑफिस का एक सन्नाटा कोना पकड़ के अभी बैठे रहिए एसी में। हाँ भैया, ये बहुत जरूरी है, इससे आपकी सेहत भी बची रहेगी और आप आने वाले टाइम के लिए शक्तियां और हिम्मत जुटा पाएंगे। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय आरएसएल ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
5: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
6: Hello Sharps, our product is phenomenal. One of a kind but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
7: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. प्रॉफिट आएगा।
6: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
8: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
6: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
9: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
10: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: देखिए डिसीजन आपका है, कोई आपको शरारत सिखाएगा, कोई शराफत, आप क्या चुनते हैं ये डिपेंड करता है। मस्त मौला गौरव। हम तो वो काम करते हैं जिससे आपको गर्व हो, नाम ही गौरव है। फिलहाल शाम के 5:03 का टाइम।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे गर्व तो हमारे इंडिया को भी एक सुपरस्टार पर है और आज उन्हीं से रिलेटेड है। पहचान कौन? तो आपको पकड़ना है कि ये आवाज किसकी है।
2: 100% फैक्ट। एंड उसके पहले भी एक बार रोया था, दैट वाज 2015। एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इमोशन, एक क्लोज गेम जब आप हारे हो।
0: 5000 1896 पे आज आपको बताना है कि ये आवाज किसकी है।
2: 100% फैक्ट। एंड उसके पहले भी एक बार रोया था, दैट वाज 2015। एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इमोशन, एक क्लोज गेम जब आप हारे हो।
0: बस 5000 1896 पे आप बड़ी क्लोज हैं, आपने पकड़ लिया, मुझे पता है। तो बताइए ये किसकी आवाज है जो मैंने आज पहचान कौन में प्ले की है, एक बार फिर से ध्यान से।
2: 100% फैक्ट। एंड उसके पहले भी एक बार रोया था, दैट वाज 2015। एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इमोशन, एक क्लोज गेम जब आप हारे हो।
0: हाँ जी, 5000 1896 पर आप भी बहुत इस क्लोज में है गेम में, पहचान कौन में। कौन सा ये स्टार है जिसको हम यहाँ आपके लिए प्ले करें, 5000 1896 पर जरूर वॉइस नोट में बताइए अपना जवाब। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी भेजो। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na vida, la murga. Energy, murga.
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर। हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: के पास है क्या ये सर्विस?
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस
2: सर? आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे। सुनिए,
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो भी मशीन चला रहे आती भी
2: सर, मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहा है तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी
3: सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गालियां मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: इनके फैंस को भी सिर्फ यही दिखाई पड़ते हैं। मस्त मौला गौरव आपके साथ, मेरे साथ मेरा शो चल रहा है शाम शानदार। और आज एक बार फिर से शाम 5 बजे के घंटे में खेलने की बारी आती है। और आज पहचान कौन में जो है इनके लोग दीवाने हैं। और ये बताइए किसकी आवाज है।
1: 100% फैक्ट। एंड उसके पहले भी एक बार रोया था, दैट वाज 2015। एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इमोशन एक क्लोज गेम जब आप हारे हो।
0: हाँ जी, तो 5000 1896 पर आपको बताना है कि आज जो मैं आवाज सुना रहा हूँ वो किसकी है।
1: 100% फैक्ट। एंड उसके पहले भी एक बार रोया था, दैट वाज 2015। एंड You know, it's very difficult to control an emotion. एक close game जब आप हारे हो।
0: हाँ जी, बस। और आप भी बहुत close हैं। बहुत सारे लोगों ने जवाब भेज दिए हैं। मैं आपको एक आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, क्योंकि जिनका ये आवाज आज आपके कानों तक पहुंच रही है उनका आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 5000 1896 पर एक आखिरी बार मौका है आपके पास, जल्दी जल्दी भेज दो, फिर एक साथ मिलकर कुछ खास करेंगे। 89.6 मिर्ची 1 पर, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज बस 24 घंटे ही रहेंगी।
1: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
2: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
1: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
2: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
3: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: All these including myself, I think sabse fittest insan hamare industry mein is Akshay Kumar, and I mean holistically fit. He can survive anywhere. Agar aap usko Mount Everest pe chhod do, agar aap usko Registan mein chhod do, Akshay Kumar will be the only guy who will survive and come out.
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड पोर्टल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड पोर्टल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट. शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
3: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जॉन अब्राहम आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री.
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है. टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी. रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट. एंड ऑफकोर्स ऋतिक रोशन ऑनेस्टली अमंगस्ट

विशाल दंडलानी की आवाज में मल्हारी गाना सुनाया किसने? और देवियों सज्जनों, जब हम आपके साथ है तो सिर्फ राग मल्हार या मल्हारी गाना नहीं सुनाते, आपको पते की बात बताते कि जेब में पड़े रियालों की ताकत कितनी है। वेल आई पे ऐप पर इस वक्त आपको मिलने वाले हैं एक कतरी रियाल के बदले इंडियन रुपीज 26.07, 26.07 भारतीय मुद्रा में। अगर वहीं हम श्रीलंकन रुपीज की बात करें अगेंस्ट वन कतरी रियाल, 91.78 श्रीलंकन रुपीज में आपको मिल जाएंगे एक कतरी रियाल। वाहिद कतरी रियाल के बदले पाकिस्तान रुपीज भेजना चाहते हैं जनाब, 76.52 पाकिस्तान रुपीज। वहीं अगर हम नेपाल रुपीज की बात करें तो पाइको हजूर एक कतरी रियाल के बदले तिमरो हजूर रेट 41.79 को रेट छो दाई। अगर घर भेजना बहनी राइट टाइम छो पैसा भेजन लो। ये अगर बात करें बंधु बांग्लादेशी टका का एकटा कतरे रियाल के बदले 33.93 तो 33.93 बांग्लादेशी टका रेट थी। तो मस मोल भर भी कहेगा जितना ज्यादा पैसा घर भेज सकते हो अच्छा करो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं। 89.6 मिर्ची वन हबीबी।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: यस, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही, और हमारे बंधु तो आप हैं। आपकी वजह से तो हम हैं और हमारी वजह से आप हैं, क्योंकि मिर्ची का कनेक्शन ही ऐसा है दोस्त। लेकिन फिलहाल के लिए जब आपके साथ रहता हूँ, ढेर सारी बातें करता हूँ और साथ ही साथ कंटेस्ट भी खेलता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए घड़ी का टाइम बता दूँ, शाम के 6:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, अब बारी आ गई देवी और सजनों आपके साथ खेलने की, इस घंटे वो जिसे कहते हैं
1: गानों की मिक्सी।
0: और गानों की मिक्सी में आज मस्मोलो गौरव ने एक बार फिर से दो गानों को पीस दिया है। बताइए कौन से गाने हैं। हाँ जी, 5000196 पे। बस बस बस 5000196 पर बताइए कौन से दो गानों की पिक्सिंग हुई है आज मिक्सी में। आइए पीसते हुए गानों को फिर से। गौरव इंतजार कर रहा है, जितना जल्दी हो सके अपने जवाब भेजिए 5000196 पर कि गौरव जो दो गानों को तुमने पीस दिया है, यानी कि मिक्सी में मिला के पीसा है, वो दो गाने फला फला है। एक बार फिर, एक आखिरी बार।

5000186 पर मस्त फॉलो गौरव इंतजार कर रहा है। फिलहाल बारी आ रही है उस गाने की जो आ रही कह रही है जी। बॉम्बे रॉकर शाश्वत मिलके गा दो।

चलिए जी, फिलहाल अगर आपको नहीं आ रही तो एक बार फिर से हम सुना रही। आज दो गानों को हमने एक साथ प्ले करके मिक्स कर दिया। बताइए गानों की मिक्सी में कौन से दो गाने हैं।

5000196 पर जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजते रहिए वॉइस नोट में कि गौरव ये गाना जो आपने सुनाया है वो ये दो गाने हैं। आइए जल्दी दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल बादशाह अरिजीत सिंह आए हैं बहुत ही खूबसूरत सा सोलमेट गाना लेकर।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vidba la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: था? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है इसमें, कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर इसमें।
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या कौन बोल रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ आपसे, रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, अब मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
2: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
11: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
12: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
10: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
13: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: लिपस्टिक लगा के नजर उतार दे, गाने को बदल दिया भाई साहब। मेरी मम्मी तो कहती काजल लगाओ नजर उतरती है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: नया दौर है सर, कुछ भी लगाओ नजर उतर सकती है, शायद सही बोला होगा। फिलहाल इन सब के बीच अदनान सामी का ये गाना खत्म होता है, और साल भर पहले हम अदनान सामी के साथ कतर में लाइव इन कॉन्सर्ट में थे, और ये मौका फिर जल्द ही मिले यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे। कुछ खास लेकर आ रहे हैं आपके लिए, इंतजार कीजिए। लेकिन इंतजार बिल्कुल मत कीजिए अगर बात गानों के मिक्स की हो, कि कौन से दो गाने हैं जो इस घंटे हमने मिक्स किए हैं।

0: 5000196 पर जवाब देने को कहा था और भर भर के लोगों ने जवाब तो लिखे लेकिन बोलकर भेजने वालों ने बहुत स्पेशल बनाया।
1: मिर्ची वन कतार, इट्स हॉट। हेलो गौरव भाई, कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया।
1: सो जो दोनों गाने हैं, एक तो है तन्नू मैं लव करदा और दूसरा जो गाना है वो है गल मिठी मिठी बोल, तो एक आयशा से एंड आई थिंक दूसरा देसी बॉयज। थैंक यू सो मच मिर्ची, इट्स हॉट। बाय बाय, थैंक यू गौरव भाई, बाय। एंड दिस इज युगल।
2: हाय गौरव, द सॉन्ग्स आर सुबह होने ना दे एंड गल मिठी मिठी बोल।
0: ओके,
2: दिस इज स्मिता विद यू।
0: थैंक यू।
3: हे गौरव, गुड इवनिंग। The music that you played was Subha Hone Na De, number one, and number two, Gal Mithi Mithi Bol. Okay, thank you.
0: Bhai, sab ke sab sahi. वेल, ये तो बोल के बताने वाले भी थे लेकिन थैंक यू कहना चाहेंगे हम मोनिका जी को जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, गल मिठी मिठी बोल, सुबह होने ना दे। इसके अलावा हम थैंक यू कहेंगे आलम को जिन्होंने सेम जवाब दिया है। नईम भाई, आप एक गाने में चूक गए हैं। यस, इन्होंने एक गाना तो गल मिठी मिठी बोल बोला और दूसरा गाना कोई कह रहे हैं रांझणा, कुछ गड़बड़ हो गया सर आपसे। वहीं खलीफा भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, गल मिठी मिठी बोल, सुबह होने ना दे। शर्नावन ने एकदम सही जवाब दिया है, गल मिठी मिठी बोल, सुबह होने ना दे। इसके अलावा थैंक यू कहना चाहेंगे रितेश भाई को जिन्होंने यही जवाब भेजा है लेकिन लिखकर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक ने और गलत बताया है। यस, इन्होंने लिखा है गल मिठी मिठी बोल लेकिन दूसरे गाने को इन्होंने मिक्का सिंह का कोई आज की पार्टी लिख दिया। भाई साहब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, पर जितने सही जवाब आए उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड रोज गानों की मिक्सी के दोनों गाने पहचाना करो, मिर्ची पे खेला करो, गानों की मिक्सी मिर्ची।
4: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: दोनों गाने मिलेंगे आपको बैक टू बैक जो हमने पीस दिए थे मिक्सी पे अब आपके सामने।

0: काफी हेल्थ कॉन्शियस चोर हैं ये फ्रांस में। मस्त मौला गौरव आपको बता दें कि फ्रांस में म्यूजियम में चोरी होती है, वो भी सुबह 5:25 पर। और ये चोर कहाँ से घुसते हैं? इमरजेंसी डोर से अंदर जाते हैं और अच्छा खासा पैसा वहाँ चुरा के निकल जाते हैं।
1: क्या कह रहे हो?
0: अरे लगभग $5 million की 27 pieces ज्वेलरी जो थी वो लालिके म्यूजियम में थी। और ये नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस का म्यूजियम है, संडे को वहां पर डकैती होती है सुबह 5:25 पर। म्यूजियम से लोग अंदर घुसते हैं और ये इमरजेंसी एग्जिट से फायर डोर से जाते हैं और वहां से चुरा के निकल लेते हैं। फिर क्या है, पुलिस से लेकर सभी लोग एकदम तेजी से एक दूसरे को फोन करते हैं, भैया ज्वेलरी चोरी हो गई। खैर अभी तो फिलहाल इन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ कैद हो रहा है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये चोर कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं। ये सुबह उठे, इन्होंने कहा नहीं 5:25 पर पहले तो कुछ चोरी करेंगे, उसके बाद दौड़ेंगे ताकि फिटनेस बनी रहे। ऐसे चोरों को दिल से सैल्यूट। लेकिन आई एम वेरी श्योर, इसी के साथ धूम 5 के लिए अब एक स्टोरी मिल चुकी है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, जल्दी से इसी थीम पे एक अच्छी सी स्टोरी बनाओ। और ये मैं कह रहा हूं, इन सबको चोरी का आइडिया ऋतिक रोशन की धूम से ही आ रहा है। याद है ना कैसे म्यूजियम में ऋतिक रोशन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस पोत की चोरी की थी? ये वही वाला आइडिया से काम हुआ है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
3: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
2: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
3: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद।

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हाँ जी, पछताओगे पछताओगे अगर पहले गोल नहीं करोगे तो बाकी 90 मिनट पछताओगे। ये बात अब बाकी टीमों ने समझ ली होगी। वैसे अब से थोड़ी देर में एक जबरदस्त मैच की शुरुआत होने जा रही है आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 में।
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रे तिरम मिर्ची।
2: स्पोर्ट्स अपडेट
0: में सबसे पहले बात करेंगे अर्जेंटीना इजिप्ट के बीच प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, जो आज खेला जाना है। यस, बता दें आज मुकाबला अर्जेंटीना और इजिप्ट का है, एंड इसके बाद कल रात 11 बजे स्विट्जरलैंड एंड कोलंबिया की टीम, और इसी के साथ फिक्चर हो जाएगा कंप्लीट। कौन सी टीम कहां पहुंचती है और किन दो टीमों के बीच मुकाबला होता है? क्या स्विट्जरलैंड वर्सेज अर्जेंटीना होगा, इजिप्ट वर्सेज स्विट्जरलैंड होगा, कोलंबिया जीतकर अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगी? इसके लिए इंतजार कीजिए आज और कल का, लेकिन जो भी जाएगा वो आखिरी क्वार्टर फाइनल के सीट को रिजर्व करेगा। अब इसी के साथ परसों से शुरू हो जाएगा क्वार्टर फाइनल, जहां पर सबसे पहला क्वार्टर फाइनल है फ्रांस एंड मोरक्को के बीच में, एक तरह से सेमीफाइनल ऑफ 2022 कतार वर्ल्ड कप। इन सब के बीच मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक शानदार गेंदबाज जो है दुनिया को अलविदा कहकर चला गया है, शापुर ज़ादरान की बात कर रहा हूं। यस, काफी दिनों से बीमार थे अफगानिस्तान के ये बॉलर, अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऊपर वाला इनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे उस दुख को सह पाने की। इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि संजू को बाहर नहीं किया गया है, एशियन गेम्स टीम में पहले से ही शामिल है और जिम्बाब्वे टूर पर इसलिए जा रहे हैं ताकि 2028 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो सके। चलिए जी, इसी उम्मीद में कि टीम इंडिया कुछ तो कमाल करेगी। पिछले दिनों हमने जिस तरह से आयरलैंड से हार देखी है उसके बाद से एक दहशत सी हो गई है। उम्मीद है टीम इंडिया पटरी पर लौटेगी, क्योंकि अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप और उसके बाद 28 में ये वर्ल्ड कप। भैया बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, टीम इंडिया अच्छे से खेलो। 89.6 मिर्ची।

0: हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलू आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ?
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

0: वेलकम हो चुका है उस मैच का जिसका सबको इंतजार था। मस्त मौला गौरव। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 7:03 के करीब हो रहा है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल, यहाँ पर मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहेगा कि अर्जेंटीना वर्सेज इजिप्ट का मुकाबला जो है वो लगभग दूसरे मिनट में चल रहा है। अर्जेंटीना 0 इजिप्ट 0 और दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो भिड़ेगी उस टीम से जो कोलंबिया वाले मैच की विनर बनेगी। हाँ जी, वैसे उम्मीद यही है कि अब वर्ल्ड कप के दौर के वो मैचेस आ गए हैं जहां पर कईयों के दिल टूटेंगे, कई फैंस उदास होंगे, कई खुश होंगे कि उनकी टीम ने बाजी मार ली है। हाँ जी, ऐसे में मसला अगर इतना ही कहेगा अर्जेंटीना के मेसी के आज भी स्कोर करते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो लगातार फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने के इतिहास को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कतर में बहुत सारे इजिप्ट से भी मिस्र के लोग रहते हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि आज उनकी इजिप्ट अच्छा खेले। बीइंग अ कतरी रेसिडेंट, हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इजिप्ट का भी सपोर्ट करें, उन्हें भी चेयर करें। भले ही आप मेसी फैन हैं लेकिन मौका इनको भी पूरा मिलना चाहिए भाई। आफ्टर ऑल प्री वर्ल्ड कप का ये मैच है, क्वार्टर फाइनल का, एंड आई एम श्योर एक शानदार मुकाबला तो देखने को मिलेगा। अब कौन किसकी चटनी बनाएगा ये तो हम कल बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

0: इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने। म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
3: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
1: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
3: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
1: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
3: हाँ जी,
1: हाँ बोलिए।
3: 33501।
1: अच्छा
3: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
1: हेलो,
3: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
4: हाय।
3: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
4: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है।
3: धोबी से
4: पूछ लीजिए।
3: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
1: हेलो
3: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
5: ये बेल जा रही है।
3: हेलो भैया, हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
1: अरे भाई तो एक बात सुन, ये
3: आपके
1: हो
3: पास
1: क्या है?
3: आपके पास पासवर्ड होगा?
1: 33501।
3: हाँ सर, 33501 है सर। हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
1: किस से पूछे जा रहे हैं?
3: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपके पास।
1: भाई ये क्या कंफर्म, भाई मेरा एटीएम कार्ड है
3: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
1: मुझे बताना है सबको थोड़ी ना, दुनिया में अल्लाह बचाने के लिए थोड़ी ना आता है।
3: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है। कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
1: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
1: अरे कुकड़ू।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
8: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
9: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
10: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
11: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
12: कम है के?
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6
15: FM मिर्ची 1।

अरे बनाए हुए कुछ लोगों ने स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, अब कतर में बन गया है पहला स्मार्ट मास्क। हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने स्मार्ट वॉच देखी होगी, स्मार्टफोन देखे होंगे, टीवी देखे होगी, स्मार्ट कार भी आने वाली है। लेकिन इन सब के बीच हमारे कतर में एक और चीज स्मार्ट हो गई, एंड दैट्स मुआइदर एरिया में कतर का सबसे पहला स्मार्ट मास्क इनॉग्रेट हो चुका है। अब आप सोचेंगे स्मार्ट मास्क क्या होता है, तो बता दें यहां पर आपको पूरी तरह से इको फ्रेंडली और हाईटेक सिस्टम मिलने वाला है, जैसे कि सोलर पावर। यहाँ का जितना भी एसी लाइटिंग है वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाली है, मतलब डायरेक्ट धूप से सब ठंडक में बदल जाएगा। इसके बाद वाटर रिसाइकलिंग की बात करें तो जो यू नो वजू में पानी यूज होता है एब्लूशन वाटर, वो वजू का पानी हो उसे वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिसाइकिल करके प्लांट को पानी दिया जाएगा, और फ्लश में भी वही यूज होने वाला है। सुपर स्मार्ट तरीका है ये। इसके अलावा स्मार्ट सेंसर लगाए गए इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कंजम्पशन मॉनिटर करने के लिए, बाकायदा यहाँ पर ऑटोमेटिक स्मार्ट कंट्रोल लगाए गए हैं ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे, वो भी स्मार्ट तरीके से, यानी कि टेक्नोलॉजी का परफेक्ट यूज, सस्टेनेबिलिटी का कतर का साथ और 2030 का विजन सारा मैच करता है मुआइदर एरिया का ये पहला स्मार्ट मास्क। अब अगली बार जब आप जुमा में किसी मस्जिद के बारे में सोचेंगे तो इस मस्जिद जरूर जाइए जहां पर आपको ये सब कुछ स्मार्ट मिलने वाला है। एंड आई एम श्योर ऊपर वाले की इबादत में अगर हम कंट्रीब्यूशन में कुछ कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए भी कर पा रहे हैं तो यस, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया को हमें ही तो संभालना है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें इसी रास्ते के लिए भेजा। 89.6 पर कतर के इस कमिटमेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाए जो वो लगातार निभा रहा है। स्मार्ट होने की जहां तक बात है, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने की बात है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: का
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: अर्ज किया है
7: इरशाद इरशाद

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अरे ऐसी टैक्सी में सफर करना किसी सपने से कम थोड़े। यस, हमारे खतर में अगर हम इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सीज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर में इसका सेकंड फेज ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल पूरा हो गया है। यस, रोबो टैक्सीज जो कि राउंड ट्रिप के लिए हेडक्वार्टर्स ऑफ एमओटी से लेकर ओल्ड दोहा पोर्ट के बीच चल रही थी, अब इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद अब फाइनली हम फेज टू की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, बता दें इलेक्ट्रिक रोबो टैक्सीज ने अपना ट्रायल रन दोहा में पूरा कर लिया है। सेकेंड फेज के लिए तैयारियां जोर शोर पर हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आपको एक नई फेज दिखाई देगी जहां पर ढेर सारे करवा की यही रोबोट टैक्सीज जो है हमारे कतर के अलग अलग कोने में आपको दिखाई पड़ेगी। एंड आप कहेंगे भाई ड्राइवर है नहीं, अपने आप चल रही है। तो यस चल रही है सर, क्योंकि कुछ लोगों के दिमागी मेहनत और कुछ रोबोट्स की टेक्निक से हम कतर में से सक्सेसफुली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उस सारी टीम को दिल से शुक्रिया मवासलात करवा की जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर मेहनत से काम कर रहे हैं। सारे ऑफिसर्स को दिल से थैंक यू, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ नजीर यानी कि एग्जाम्पल बनाना है तो कतर जैसा बनाओ। कमिटमेंट को समय से पहले पूरा करो और दुनिया को दिखा दो कि हमने जो चाहा वो कर दिखाया। ऑल द बेस्ट इस बात पे, बस इतना ही कहेंगे। कुनाफा या बकलावा है तो भिजवाओ हमारे यहाँ, वैसे तो आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है, वो भी भिजवा सकते हो। मिर्ची थॉट

0: Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता है तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाता रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके इट शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्ड आई। Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
3: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस ह्योर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: चल रहा है जी जिंदगी में सब चीज का अपना समय ही चल रहा है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन फिलहाल हमारे दोहा में जबरदस्त तेज हवाएं चल रही हैं और इसकी वार्निंग कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमसे दे दी है कि आज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड एंड हाई सी होने वाला है। तो अगर आप बीच किनारे जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज इस बात को समझिए कि आज वहां जाने का मौका है नहीं। Yes, बहुत सारी जगहों पर काफी ज्यादा यू नो विंड स्पीड होगी, इसके चलते हाई टाइड्स की भी बातें की जा रही हैं। विल ऑफशोर पर 4 से 7 फीट, इनफैक्ट एट 9 फीट एट टाइम्स। तो कोशिश यही कीजिए जितना दूर रहें ऐसे मौसम में, अच्छा ही है। और वैसे भी मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब हमें घर में ना रहकर कुछ ठंडी ठंडी चीजें पीकर टीवी के सामने बैठकर वर्ल्ड कप के मैचेस एंजॉय करने चाहिए। और वैसे भी आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच भी चल रहा है, तो जो एंजॉय करना है करते रहो। और को थैंक यू कहो जो कार में आपके फुल एंजॉयमेंट का जुगाड़ रखता है। अब अगला गाना हमारे दिल के बारे में विश्लेषण हो रहा है मिर्जी पर। टाटा बाय हबीबी, मां सलामा, कल मिलते हैं।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत ही रेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग।
2: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। वेलकम टू द शो जी। और हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे जब वो ये कहते थे कि यार इवन इफ यू आर हेटिंग समवन ना, अगर आप किसी से नफरत भी कर रहे हैं तो आप उनको अपने दिमाग में, आप उनको अपने जहन में जगह दे रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक बड़ा बेहतरीन शेर मिला मुझे शाहिद इश्की साहब का। लिखते हैं कि हमसे नफरत करो कि प्यार करो, हमसे नफरत करो कि प्यार करो, कोई रिश्ता तो उस्तवार करो। और कितना सटीक है भाई साहब, कुछ तो हो हमारे बीच। उस्तवार का मतलब पक्का करो, मजबूत करो। हमसे नफरत करो कि प्यार करो, कोई रिश्ता तो उस्तवार करो। और बिल्कुल जायज बात है यार, जब तक आप हेट भी अगर फील कर रहे हैं ना किसी की तरफ, तो कुछ तो है आपके अंदर जो अभी भी उस शख्स से जुड़ा हुआ है, है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। मुझसे बात करना चाहें तो आ सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब इस महफिल में वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आधुनिक हिंदी कविता के एक बड़े ही प्रमुख कवि और कथाकार से। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि बड़े सोशलिस्ट आइडियाज पे लिखा करते थे। साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया और मेरी एक बड़ी ही पसंदीदा कविता है केदारनाथ जी की, जो उनकी विजुअल राइटिंग स्किल्स को दर्शाती है। केदारनाथ जी लिखते हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था। मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। वाह जी वाह, दिल खुश कर देता यार, इमेजरी हो तो ऐसी। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
0: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और अभी हाल ही में अंकुश कुमार जी की लिखी हुई एक बड़ी अच्छी कविता मेरे हाथ लगी माओं के बारे में। तो मैंने सोचा आपको नजर करूं। माओं की बात केवल मदर्स डे पे थोड़ी ना होनी चाहिए। कविता का शीर्षक है माए। मैं अपने दोस्तों से मिलकर खुश होता हूं और उनके साथ करता हूं बात घंटों तक फोन पर। पिताजी के साथ उनके दोस्त आते हैं कई बार दफ्तर से, गली मोहल्ले के यार दोस्त, कॉलेज के दिनों के दोस्त भी अक्सर आते रहे हैं घर। उन सब से मिलते हुए मैं अक्सर मां की सहेलियों के बारे में सोचता हूं। कहां होंगी वे सहेलियां जिनके संग मां जाती होगी स्कूल, खेला होगा खो खो और स्टॉपू, किसी फिल्म हीरो के सपने जिनके संग देखे होंगे। गली मोहल्ले की ज्यादातर औरतें मां को दीदी बोलती हैं, क्योंकि मां उन सबसे बड़ी है उम्र में। मैं तब सोचता हूं जब मां की सहेलियां बुलाती होंगी मां को नाम से, तब कैसे दौड़ पड़ती होंगी वो। लेकिन न जाने कब से वो तरस गई हैं किसी पुराने परिचित से अपना नाम सुनने को। मैं ये सब सोचता हूं हर बार मां के लिए और उदास होता हूं। मां हालांकि उस उदासी से उबर गई है जब वो 19 बरस की आयु में अपनी सहेलियों से दूर हो गई थी। राखी पर मामा के घर जाते समय मां हर बार लौट आती है अगले ही दिन, और तब मुझे बस यही लगता है कि हर बार माओ को ही क्यों लौटना पड़ता है, इस मर्यादा के साथ कि जाओ अब वही है तुम्हारा घर। अगर अपनी माओ के जीवन में हम झांके तो एक वेदना दिखती है जो बड़ी बाद में महसूस हुई। बहुत बड़ा होने के बाद ये महसूस हुआ कि मां की वेदना क्या है। बहरहाल आपको अपनी मां के बारे में सोच के क्या कोई कविता, क्या कोई नगमा याद आता है? मुझे बताइए मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, इट्स हॉट।

0: Beyond Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
0: Only on Mirchi, it's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
0: Only on Mirchi, it's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि मैं आपको नजर करूं मेरी एक बड़ी पसंदीदा गजल। ये गजल ओरिजिनली मेहदी हसन साहब ने गाई और क्या गाई दोस्त, मतलब वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गजल्स। और इसका जो मैसेज है, इसका जो मतलब है, मानी है, इतना प्यारा है कि दिल छू लेता है, मेरे दिल के बड़े करीब। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था,

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास।
3: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूं चारू आपके साथ। लेकिन आपको पता है दिलीप कुमार साहब ये ट्रेजेडी रोल्स करते करते थक गए थे, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ने लग गया था। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: हर कहानी में समझिए ना कि रंज और तकलीफ, और रोज सुबह उठिए तो नहा धो के कपड़े बदल के आप स्टूडियो में पहुंची तो कोई रोने मरने का सीन या कुछ तकलीफ का इस किस्म की चीज़ जो है वो इंसान के ज़हनी नशोनुमा पर वो असरानंदाज होती है, और छोटी उम्र में ये चीज़ बहुत ही असरानंदाज कर होती है तबीयत के ऊपर। और इसके लिए मैं कई मैंने ड्रामा के कोच थे जिनसे बात की और जिनसे मशवरा किया, कुछ साइकाइट्रिस्ट थे उनसे मशवरा किया, और उन्होंने यही कहा कि इस चीज़ से इसके छुटकारा पाने के लिए आप ज़रूर कॉमेडी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कॉमेडी करने की, एक्शन का फिल्म करने की, या किरदार को अपने जो है एक यानी शदीद किस्म की तब्दीली अपने किरदार में लाइए, काम करने का जहाँ तक ताल्लुक है उससे वो फ़ायदा होगा।
0: बस इसके बाद इन्होंने कॉमेडी पटाखा फायर क्रैकर टाइप के रोल्स करने शुरू कर दिए, और इसी तरह का एक पटाखा गाना इनका सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: लागा गोरी गुजरिया से

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, सेल्यूलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
3: अच्छा,
4: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
3: के पास है क्या ये सर्विस?
4: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
3: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
4: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
3: और ठीक है,
4: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
3: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
4: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
3: ये क्या है भैया?
4: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
3: तो मशीन चलाने आती भी है
4: सर? मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे? देखिए
3: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
4: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
3: मजाक कर रहे तू मेरे से?
4: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गालियां नहीं सुन सकता सर, मैं
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गालियां मत दीजिए यार।
4: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
3: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।

0: हमारे यूसुफ खान साहब, पठान साहब, ये दिलीप कुमार कैसे बने? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये नाम बदलने की वजह सुनी उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या शेयर की थी।
1: हकीकत बताऊँ, पिटाई के डर से मैंने ये नाम रखा। मेरे वालिद फिल्मों के सख्त मुखालिफ थे और उनके अजीज दोस्त एक लाला बशीर नाथ थे, जिनके साहेबजादे पृथ्वीराज कपूर भी फिल्म एक्टिंग किया करते थे, और वो अक्सर बशीर नाथ जी से बड़ी शिकायत करते थे कि तुमने ये क्या कर रखा है कि तुम्हारा इतना नौजवान और सेहतमंद लड़का देखो ये क्या काम करता है। तो मैं जब फिल्म में आया तो मुझे वो खौफ भी था कि ये जब इनको मालूम होगा तो नाराज़ बहुत हो गए। उस वक्त दो तीन नाम सामने रखे गए कि यूसुफ़ ख़ान नाम रखा जाए या दिलीप कुमार रखा जाए या वासुदेव रखा जाए। तो मैंने अपनी ज़ाती तौर से कहा कि यूसुफ खान मत रखिए और जो आपके दिल में आए आप नाम रख दीजिए।
0: और इस तरह ये दिलीप कुमार बन गए, कभी देवदास के देवा, कभी मुगले आजम के सलीम बन गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची
1: स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: दिलीप कुमार साहब ने अपने 50 साल के करियर में कुछ 50-60 फिल्में की होंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, बिकॉज ही बिलीव्ड इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सुनिए इस बारे में एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: मिर्जा गालिब लिखते हैं कि अगर हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए, हूर हो या परी अगर गले का हार हो जाए तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। If you have the same artist for breakfast, in the same artist for lunch, in the same artist for dinner, I mean, if that is the frequency, कि हर साल उनके 6-7-8 फिल्म हैं, हर फिल्म में वो ऐसा प्रेडिक्टेबल काम करते हैं कि आप ये महसूस करते हैं कि इस फिल्म में तो वो उस फिल्म की झलक है और इस झलक में उस फिल्म से, तो एक कॉमन पर्सनैलिटी बन जाती है। क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी टकसाली काम होता है, लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट तवज्जो से चुनेंगे, लोगों के आगे अलग अलग चीज़ें फिल्म या किरदार पेश करते हैं, वो एक रीजन होता है लॉन्जिविटी का।
0: कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, और आप फिलहाल एक काम करो, मुस्कान को ले जाओ कान तक और कान रखो मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा ओजी हैंडसम दिलीप कुमार स्पेशल विद चारू ऑन पुरानी जीन्स ओनली ऑन मिर्ची।

0: The most phenomenal actor of Indian cinema, Dilip Kumar Sahab. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और उनके मोस्ट फिनोमिनल रोल्स में से एक है देवदास फिल्म का रोल। इसके बारे में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया इस फिल्म के बारे में, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: देवदास फिल्म थी, शरद चंद्र चटर्जी की कहानी थी। फिल्म जो होता है वो लिटरेचर पर मुबनी होता है, डिपेंड करता है। जितनी के क्लासी की कहानी थी तकरीबन लगभग उससे मिलता जुलता उसी वजन का वो फिल्म भी बना। और मुझे लगता है आपको देवदास पसंद है ज़ाती तौर पर, और मुझसे पूछेंगे तो ज़ाती तौर पर देवदास मुझे भी पसंद है। कुछ लोगों को अब भी पूछिए तो कहते हैं कि देवदास बहुत बेहतर है। हमारे दोस्तों का एक हलका है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं सबसे अच्छा तुम्हारा फिल्म जो था वो कोहिनूर था, और वो फिल्म कोई ट्रेजिक फिल्म देखना ही नहीं चाहते। कई लोग हैं कहते हैं कि क्या हम दिन भर के काम काज के बाद जाएं तुम्हारे रोने धोने का फिल्म देख के, हम तो पहले पूछ लेते हैं भाई कि इसमें क्या काम कर रहे हो तुम।
0: वैसे 1960 की कोहिनूर फिल्म वही फिल्म है विच वॉज सॉर्ट ऑफ अ डिपार्चर फ्रॉम हिज ट्रेजिक रोल्स। इसमें उनका रोल बहुत लाइट हार्टेड कॉमिक था। एक क्लासिकल सॉन्ग इन पर पिक्चराइज हुआ था जिसके लिए इन्होंने स्पेशली सितार प्ले करना सीखा था। सुन लेते हैं वो गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ, चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
2: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?

0: आपको पता है दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छी शायरी करते थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे और बहुत अच्छा गाते भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर उनको ऐसा नहीं लगता था। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनको गाने को कहा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: गाने वाने का काम मेरा नहीं है, मैं अंग्रेजी में कहते ना जो टॉयलेट रूम सिंगिंग, वो हमारी वही है, आप उसको वहीं रखिए।
0: वेल, इसके बाद काफी रिक्वेस्ट इसरार करने के बाद आखिर उन्होंने कुछ गा के सुनाया, सुनिए।
1: दिल के लिए

0: फिर उन्हें सलाम करूं।
1: अब सलामी की बात हो रही है तो ये गाना सुन लेते हैं, राम और श्याम फिल्म का, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मेरी ट्रेजेडी ये ही है कि अक्सर ऐसा हुआ कि जो गाने मुझको पसंद आते हैं, पिक्चर से पहले मैंने नौशाद साहब से भी कहा कि मुझको ये कैसा गाना आपने दिया है, सामान ले चले नौत का सामान ले। और नरगिस को आप अच्छे गाने देते हैं या निमी को या नादरा को अच्छे गाने देते हैं, तो कहीं नहीं भाई लिखिएगा ये अच्छा। और मेरे जो पसंद के होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और जो मुझको अपने गाने अच्छे नहीं लगते वो सब हिट हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी अलामत है, इट्स ए वेरी हेल्दी इंडिकेशन। इफ़ आई स्टार्ट ऑफ बाई नॉट लाइकिंग ए सॉन्ग, इट बिकम्स ए बिग हिट।
0: इसी बात पे इनका ये माइंड ब्लोइंग सुपर हिट गाना सुन लेते हैं, जिसके बगैर हर शादी हर बारात अधूरी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.
1: Mirchi Stories. Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, चैन चुराने पर पुलिस चोरों को ढोल बाजों के साथ में पुलिस थाने लेकर गई है।
4: भाई इसे ही तो कर्मा बोलते हैं। इन्होंने लोगों की चैन चुराई, अब पुलिस इनका चैन छीनेगी।
3: हाँ पर इनको ढोल बाजे के साथ क्यों लेकर जा रहे हैं?
4: क्योंकि अब ये इनके ससुराल जा रहे हैं ना।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा दिलीप कुमार साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अपने करियर में जो रूल जो फिलॉसफी वो फॉलो करते थे वो था क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और पता नहीं कितने रोल्स उन्होंने रिजेक्ट किए, इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: कभी ऐसा होता है कि वो रोल नहीं पसंद आता। अब मदर इंडिया में उन्होंने मुझे रोल कहा कि ये रोल करना है। He was very determined about it, and so were his our colleagues. But I knew it that it is not the sensible thing for me to attempt, because Nargis and I were a combination at that time. I had done about 6 films with her, and some of them were good romantic films, and they were not out of the memory of people. Now, उसमें अगर मैं ऐसा पिक्चर हूँ कि मैं उसको माँ माँ करूँ या वो मुझे बेटा बेटा करके तो बात करे, आई थॉट दैट दिस विल नॉट गो वेल विद द पीपल। सो देर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू एक्सरसाइज योर जजमेंट एंड इवैल्यूएट इट नो मैटर हु यू आर वर्किंग विद।
0: आप सोचिए 50 साल के करियर में इस बंदे की 50-60 फिल्में आई, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद कितने ऑफर्स इनको आते होंगे, कितने रोल्स इन्होंने रिजेक्ट किए होंगे। पैसे वैसे का कोई लालच नहीं है। हैट्स ऑफ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ, चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची 89.6 89.6 89.6। अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ, चारू के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची

0: पर दिलीप कुमार साहब के बारे में कहा जाता था कभी कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, कभी कहा जाता था कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, और कभी कहा जाता था कि वो बहुत एरोगेंट हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। यही सवाल जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: इंसान की पर्सनैलिटी होती है या उसकी शख्सियत होती है, उसमें मुख्तलिफ पहलू होते हैं। हंसी खेल का एक पहलू होता है, लुत्फ लेने का पहलू होता है, फिर संजीदगी का होता है, फिक्रमंदी भी होती है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, गुरूर या घमंड जो है वो इंसान की शख्सियत में एक बीमारी, एक मर्ज़ है, उससे बचने का। अब जो लोग मुझे ज़ाती तौर से जानते हैं वो तो जानते हैं, और जो लोग मुझे ज़ाती तौर से नहीं जानते वो नहीं जानते। और इस

0: पोजीशन में ऐसे होता है कि आप ज़्यादातर जाके लोगों से मिलकर बात करें या अपनी किसी मसले की वजाहत करें, ये एक नामुमकिन सी बात है। तो आर्टिस्ट की पर्सनैलिटी में ये तजाद जो है वो रहता है, लेकिन गुरूर और घमंड का अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए तो मुझे उस बात का वाकई सदमा हुआ।
1: बिल्कुल सही बात है यार, इंसान अपने अपनों के आगे, अपने लव्ड वंस के आगे तो एक्सट्रोवर्ट ही होता है ना, हर किसी से थोड़ी ना अपना सब कुछ शेयर करते फिरेंगे। फिलहाल मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो है एक स्माइल, आप भी स्माइल कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Kohinoor of Indian Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline?
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
1: अरे भाई क्या बोलूँ आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ।
2: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
3: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

0: ये मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगली बार से जब भी मैं दिलीप कुमार साहब का कोई इंटरव्यू सुनूंगी ना, तो साइड के टैब में उर्दू डिक्शनरी खोल के रखूंगी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। क्या क्या लफ्जों का इस्तेमाल करते थे वो। तो ऐसे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्योंकि वो एक पठान फैमिली से बिलोंग करते थे, उनके फादर ये थिएटर एक्टिंग वगैरह के सख्त खिलाफ थे, और यूजुअली ऐसा समझा जाता है कि पठान जो है अंदर से चाहे भोले मासूम कुछ होते हैं और बाहर से एकदम रफ एंड टफ, तो ये एक्टिंग करने वाली एक जो सेंसिटिविटी होती है ये इनके अंदर कैसे आई, इस बारे में सुनिए दिलीप कुमार साहब ने यूसुफ खान साहब ने क्या कहा था।
1: पठान लोग आमतौर से फनून लतीफा से उनका उनकी इतनी वाबस्तगी नहीं जितनी के जफाकशी या जवामर्दी से उनका नाम मुतालिक किया जाता है। लेकिन मैं खुद भी इस बात को समझ नहीं पाया, ये सोचता हूँ कि सूए इत्तेफाक में एक फिल्म एक्टर बन गया, और कुछ शायद मेरे बचपन के वाकयात और जो हादसात उनकी कुछ नौयत इस किस्म की थी कि अंदरूनी तौर से मुझ में एक जज्बाती कैफियत जो थी वो ज्यादा शदीद थी।
0: उफ उफ उफ उफ, फनूने लतीफा, बाबस्तगी, जफाकशी, कैफियत शदीद, मर गई मैं। वैसे छोटे होते से ये एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बड़े होके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए कि ये सिर्फ एक्टर नहीं बने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर बने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: दिलीप कुमार साहब जब बात करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई शायरी बोल रहे हैं, कविता बोल रहे हैं, कुछ पोएम बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी जुबानें उनकी इतनी साफ, इतनी प्यारी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि उनको ये जो फेम, इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं।
1: शोहरत और नाम जो है, इससे एक अच्छे आर्टिस्ट को या किसी भी आदमी को हमेशा गैर मुतालिक रहना चाहिए। शोहरत वो मेरी है, अगर मैं ये समझने लगूँ तो मेरी सेहत के खिलाफ बात होगी। अल्लाह की कुदरत है, मैं पैदा हुआ जिस घर में वो, उसमें मेरा इरादा नहीं था, मैं अपने इरादे से आया नहीं, मैं अपने इरादे से यहाँ नहीं पहुँचा, और जिस दिन इस दुनिया से जाना है उसका मेरा कोई, मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो शोहरत हो या बदनामी हो, रसवाई हो, वो दी हुई मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से है। कोशिश अपने तो यहाँ मेरा फ़र्ज़ है, मैं कोशिश करता रहा। मैं यही चाहूँगा कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ, बेहतर काम कर सकूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी बात पे हम लेंगे ब्रेक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Kohinoor of Indian Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट,
0: द कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, OG Handsome, Dilip Kumar Special, with Charu, on Purani Jeans, only on Mirchi.

0: दिलीप कुमार साहब ने पता नहीं कितने एक्टर्स को इंस्पायर किया है, अपने कंटेम्प्रेरीज लाइक बलराज साहनी साहब को भी और आने वाली जेनरेशंस, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, कमल हासन, आमिर खान, शाहरुख खान, और इसीलिए दिलीप कुमार साहब को, क्योंकि वो इतने फिनोमिनल एक्टर थे, उनको कोहिनूर ऑफ इंडियन सिनेमा, अभिनय सम्राट और खास करके ट्रेजेडी किंग बुलाया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और क्यों उनको ट्रेजिक रोल्स में इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था।
1: ट्रेजेडी यानी अलमिया किस्म की कहानी का असर ज्यादा होता है, जैसे लैला मजनू की दास्तान या शीरिन फरहाद का वो किस्सा आप समझ लीजिए, ट्रेजिक कहानी होगी उसका असर और गम का, तकलीफ का या रंज का असर जो होता है वो देरपा होता है, खुशी और मसरत जो है वो जल्दी गुजर जाती है। मेरे ख्याल से जहाँ तक कि ये अलमिया अदाकारी का जो इम्प्रेशन ज़्यादा देर तक कायम रहा है वो इसीलिए है कि अलमिया कहानी जो है वो बजाते खुद देर पर असर रखती है।
0: चलिए इसी बात पे इनका एक सैड ट्रेजिक लेकिन आइकॉनिक गाना सुनेंगे, जिसके पता नहीं कितने रीमेक्स बन चुके हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अभिनय सम्राट द लेजेंडरी दिलीप कुमार स्पेशल चारू के साथ पुरानी जीन्स पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: 89.6
0: The Kohinoor of Indian Cinema, OG Handsome, Dilip Kumar Special with Charu on Purani Jeans, only on Mirchi 89.6.

0: दुनिया को जब पता भी नहीं था कि मेथड एक्टिंग नाम की कोई चीज होती है, तब से दिलीप कुमार साहब मेथड एक्टिंग कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब इस तरह की एक्टिंग जहाँ पे आप वो किरदार बन जाते हो, उसको घोट के पी जाते हो, फिर आप एक्टिंग कहाँ करते हो? सब नेचुरली एफर्टलेसली होता है। और क्योंकि दिलीप कुमार साहब अपने किरदारों में इतना घुस जाते थे, खास करके उनके जो ट्रेजेडी रोल्स होते थे, वो उनकी मेंटल हेल्थ पे काफी असर डालते थे। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: खास तौर से उस वक्त जबकि हम अपने काम से जाती तौर से बड़े मुतासर होते हैं, वो कहता है भाई ये आपकी माँ है और ये मर गई है। अब हमको मालूम है कि ये माँ नहीं है, ये मर गई, मरी भी नहीं है, ये जिंदा है। इनका नाम ललिता पवार है, ये जाग रही थी अभी, इन्होंने पेट भर के खाना। लेकिन अपने ऊपर वो एक हावी करना है एक जज्बे को, ये किस्म की शदीद यानी सजा है अपने नर्वस इक्विपमेंट को। यानी रोज रोज या हर साल अगर आदमी करता रहे तो वो इसका असीर हो जाता है। हर कहानी में समझिए ना कि रंज और तकलीफ, और रोज सुबह उठिए तो नहा धो के कपड़े बदल के आप स्टूडियो में पहुंची तो कोई रोने मरने का सीन, इस किस्म की चीज जो है वो इंसान के ज़हनी नशोनुमा पर वो असरअंदाज होती है
0: जी। और फिर इसके बाद इन्होंने काफी एक्टिंग कोचेस से, साइकेट्रिस्ट से सलाह मशवरा किया और ट्रेजेडी रोल्स छोड़ के कॉमेडी, एक्शन या लाइट हार्टेड रोल्स करने शुरू किए। हम सुनेंगे दिलीप कुमार साहब का ये थोड़ा सैड बट क्लासिक गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Kohinoor of Indian Cinema. OG Handsome. Dilip Kumar Special. With Charu. With Charu. On Purani Jeans. Only on Mirchi.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

जा बुरा कर दे हाँ, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।